वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। गुरबाणी विचार प्रोग्राम दे विच तुहाडा स्वागत है पंजाबी रेडियो कैलगरी 102.7 FM ते। यह प्रोग्राम तुहाडी सेवा दे विच हर हफ्ते 5 दिन प्रसारित हुंदा है। प्रोग्राम का प्रसारण समा सोमवार तो लैके शुक्रवार तक कैलगरी समय अनुसार शाम के 6 बजे तो 8 बजे तक, भारतीय समय अनुसार यह प्रोग्राम तुहाडी सेवा दे विच मंगलवार तो लैके सनिचरवार तक सवेर के 5:30 तो 7:30 तक प्रसारित होता है। आओ प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस अलाही संदेश के नाल।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए ला

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

एक बार फिर तुहाडी सेवा दे विच हाजिर। अज आपां विचार करदे हां गुरमत मुताबक गुरमत अनुसार विचार कर्म अते अमल एक की ने, क्योंकि जदों असीं गुरु साहिबान नूं पढ़दे हां असीं बहुत सारे होर विद्वानां नूं समय समय पढ़दे हां, भावें जो ग्रीक दे फिलासफर होए ने, भावें चाइना सभ्यता दे विच ताओइज़म होया, बौद्ध धर्म होया, महात्मा बुद्ध नूं पढ़दे हां, बड़े बड़े विचारक पछम दे विच प्रॉफिट मुहम्मद साहब होए ने, या बाकी इब्राहिमिक धर्मां दे विच

विसरया जिन नाम ते भूए पारथिए। और हकीकी इश्क दी उन्होंने गल की है। बाबा फरीद जी ने सानू इन्ना कुछ दुनिया के उत्ते दिता कि जदों उन्होंने सलोक नगरां विच पिंडां विच भोग दे दौरान पढ़े जाते हैं उन्होंने सीधी ठेस पंजाबी आ। एकदम पंजाबी विच उन्होंने सारे सलोक उच्चारण किए और वह सानू आम जिहड़ी समझ रखण वाले आ उन्होंने भी चंगी तरह समझ आ जाते हैं। हुण गुरमुख प्यारो पावन श्री हरिमंदर साहब तो जो मुख वाक आया है उस पावन विचार की असी संगतां तक गुरु पातशाह तो शीश झुका के विचार सांझी करनी है क्योंकि अज श्रोमणी भगत भगत रविदास महाराज जिया का यह पावन हुक्म है ते भगत कबीर साहब जी का यह पावन हुक्म है और भगत कबीर साहब जी जिहड़े हन ये हाजर जवाबी हैं। इवें कह लो कि जिवें जदों भी उन्हां दे सामने कोई विवाद करन वाला खड़ा हो गया जे कोई जात पात दे वितकरे वाला सामने आ गया तो भगत कबीर जी ने उन्हूं मूँह दे उत्ते उस वक्त हाजर जवाबी जवाब दिता। जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन वाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद हम कत लोहू तुम कत दूध। तेरे विच ते सजना मेरे विच फर्क की है क्योंकि डंके दी चोट दे उते भगत कबीर साहब ने एक अकाल पुरख दे गुण गाए हन जी सत।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है, यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है, यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो इन्हीं की साधना इन्हीं से मिलने वाली राहत के ऊपर दृढ़ हो चुके हैं और किसी की बात सुनने तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले, दूषित कर्म निकम्मे कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि वो मेरी भक्ति भी ना करते। अब यहां इसको उनको चार गाली दी है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख। पुण्यात्मा एक बार कुंभ का मेला भरा था और कुंभ पर्व का संयोग हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर हुआ। उसमें एक समय निर्धारित होता है, वो सीमित सा समय होता है कि इस दौरान पर भी लगेगी और उस पर भी के दौरान जो स्नान कर लेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, जैसा भी लाभ उन्होंने सोच रखा अपना दंत कथा से। उस आधार पर ये गिरी पुरी नागा कनपाड़े वैष्णो ये सभी संत साधु जिनको हम संत कहते हैं साधु कहते हैं ये चले गए वहां नहाने के लिए पर भी में कुंभ के मेले पे, और ये वहां इकट्ठे हो जाते हैं गिरी गिरी वाले ग्रुप में, पुरी पुरी वाले ग्रुप में, सन्यासी सन्यासी वाले ग्रुप में, नागा नागा वाले ग्रुप में और वैष्णो अपने वैष्णो के ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जब आता स्नान करने का समय तो इनका हेड तो आगे आगे होता है, बाकी उनके पीछे पीछे स्नानार चल पड़ते हैं। ये बहुत पुराने समय की बात है, तो उसमें सबसे पहले नागा जो कति नंगे रहते हैं वो चले गए, उनका ग्रुप चला गया स्नान करने के लिए। सबसे पहले वो अर्की पैड़ी पे वो पहुंच गए, उधर पीछे से वैष्णो साधुओं का ग्रुप आ गया। अब वैष्णो ने देखा कि नागा पहले स्नान करने वाले हैं, उन्होंने आवाज लगाई कि नागाओ हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आ जाओ। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम नी वस्त्र है, हम कोई इच्छा भी नहीं रखते हैं, हम कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णो साधु कहने लगे तुम नंगे रहते हो पशु की तरह, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरीर फिरडो बार मरो। अब नागा इतनी टार कड़े उठे थी उन पर, अब बताया ना बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं और पांचो नार 2500 लड़के धुंधो धार मचावे हैं। इवो काम क्रोध, वो क्रोध रूपी राक्षस वो अंदर ही था, उसने बजा दी विसल, वो 500 अड़ंगे भीतर भरे पड़े तुम्हारे, वो तुमने कैसे मोक्ष सुन देंगे, अब क्या करवा दिया, उल्टा मुंह कर लिया नान की बजाय और लठम लठा। वैष्णो साधु और वो नागा और फिर तो वो विघ्न हो गया। वहां पर कहते हैं 25,000 लगभग 25,000 व्यक्ति वह संत कुआ थे, नागा और वैष्णो आपस में कतलेआम कर दिया वहां पर। नाना नूना और भगवान तो गया बाड़ में, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं। भगवान की पैड़ी कवे परमात्मा का प्यार भी भूल गए हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, काटे शीस दया भी कोई ना, अरे वो संत कमावे हैं वो साधु कहलाते हैं। और जो नर जाके दर्शन जाही उनको भी नरक पठावे हैं। ऐसे व्यक्तियों को संत मानकर साधु मानकर जो भोली आत्मा इनके पास जाते हैं, इनसे उपदेश लेते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनकी भी यही दशा करते हैं, उनको भी नरक भेजते हैं। कक्कड़ भांग तमाखू पी हुए बकरे काट तलावे हैं, बकरे काट कर उनकी छोंक लावे हैं, और सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे जावे हैं। कमाल कर दिया। आपने देखा होगा ये कावड़ लेनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक सावन के महीने में, और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल, नंगे पैर बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज्यादातर पैदल ज्यादा आते हैं, और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है, भगवान वैसे नहीं देता। अब देखो प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं, एक कोड वर्ड होता है। जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जाकर ही नहीं देखे और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है, ऐसे ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड है, जो विशेष मंत्र है जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं, वो मंत्र यथार्थ मंत्र है जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहां से लेकर सावन के महीने में, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी, यानी जितना हो सके कम से कम सफर करे सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहां से पैदल चलो गंगा से हरिद्वार से और अपने अपने घर तक आओ, तो उसमें कितने जीवन के पैरां तलम रहे वो सारे उनके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पाया गंगा जल लेकर आम है वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है, और नाम लेते नहीं भगवान का, बम बम महादेव भी ना कहते हुए बम बम बम बम, अब उन कोई नहीं है बम बम का नाम भी बुंडा। और वो मानने इसने मंत्र तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं, एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चल आगे ने, और बेबर ने कहेंगे बोली चल आगे, इन दोनों बेरा तुम क्या संज्ञा दे रहे हो अपने कम्यो, आप बोला बन रहे बेबेन बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति माइनस जीरो में पहुंच गए। अब इस माइनस जीरो से ऊपर उठाने के लिए इस दास को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन ये सफल होगा, ये यथार्थ ज्ञान है और इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे जावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाने हम सतगुरु बैठे न्यू जाने, ये दस नामी दया नहीं जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, और पार ब्रह्म से परचे नाही शिव करता ठहरावे हैं। कहते हैं ये दस नामी लाल कपड़े पहन कर संत बने फिरे हैं, और ये पार ब्रह्म से तो परिचित नहीं सतपुरुष से, और शिव को भगवान बतावे हैं। ये यू सबका सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालजय, और ये खुद कहते हैं देवी भागवत के तीसरे स्कंद में कि हम तो नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। चार संप्रदा बावन द्वारे बैरागी अब आवे हैं, कूड़े बेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं। ये चार संप्रदा बावन द्वारे बैरागी कहते ये कूड़े बेख काल का बाणा, ये झूठी साधना करने वाले काल के पुजारी हैं ये, और संतों देख रिसावे हैं, संतों के बारे में जिक्र चल जाए तो दूना दुख मानने हैं, रखो के ले रहे नारायण। परमात्मा कहते हैं थारा अक्षौणी अक्षय करी चुन कर शिशुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर भाई सभी काल के वेख। हे परमात्मा कितना निर्मल ज्ञान दिया है। कहते एक चुनक नाम के ऋषि थे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 17 और 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की उपासना के बारे में बता दी कि वही साधना करते वही से आदमी है। और फिर कहे कि मेरी भक्ति ब्रह्म साधना भी चार प्रकार के करते अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, उनमें से वो तीन रिजेक्टेड है। ये ज्ञानी जो है ये अच्छी आत्मा है, इनको पता लग गया मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन पाके जो सत्साधना नहीं की तो व्यर्थ है। और केवल एक अन्य उपासना नहीं करनी किसी देवी देवता या व्रत तीर्थ की, केवल एक भगवान की भक्ति करनी है पूर्ण परमात्मा की, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। तो उनको ये पता लग गया, दृढ़ विश्वास हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए ही मिला है, तो उनको ये तो ज्ञान हो गया। फिर वेदों से स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप और हठ योग ये ही इसका साधन है, जबकि ये ब्रह्म तक काल तक की पूजा थी। तिक्तुणक नाम के ऋषि ने हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग तप किया, भगवान मिला नहीं, सिद्धियां आ गई। एक मानदाता राजा था, उसके साथ अटपट कर ली, युद्ध कर लिया। अरमानदाता चक्रवर्ती राजा के पास 72 करोड़ सेना थी, पूरी पृथ्वी पर अपने संदेश वाहक भेजकर ये जानकारी प्राप्त की थी कि भी कोई मेरी पराधीनता से कोई अलग तो होना नहीं चाहता, यदि कोई मेरी अधीनता नहीं स्वीकार करता उसने युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा संदेश लेकर सब जगह घुड़सवार जा रहे थे, आए वापस। चुनक ऋषि ने पूछा भी कहां गए थे, कौन हो तुम, कहां से आए हो। इस एक घोड़ा था वो खाली था बगैर सवारी के, उसके गले में कुछ लिखा हुआ था। तो ऋषि ने पूछा भी ये घोड़ा खाली क्यों छोड़ रखा है, इस पर कोई बैठा क्यों नहीं। तो राजा के सैनिकों ने सारी कहानी बताई कि ये मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, इसके गले में ऐसे लिखा हुआ है। हम पूरी पृथ्वी पर घूम आए, किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करना नहीं चाहा, सभी उनसे डरते हैं। टुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने भी उनका युद्ध नहीं उठा। नहीं, कौन उठे, पता है हमारे राजा के पास 72 सोनी सेना है, जाड़ फोड़ देंगे। अब ऋषि ने सोची भाई अभिमान हो गया, काल प्रेरणा है, ये राजा को सबक सिखाना चाहिए। टुणक ऋषि बोला भाई मैंने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। और वह सैनिक बोले रहा कंगाल तेरा दाने खान नहीं, अरे तू युद्ध करेगा चक्रवर्ती राजा के साथ, तेरी क्यों सात बोल दे रही है, अपना कर ले भक्ति बोल वाला। टुणक ऋषि कहने लगा भाई मेरे भाग में नहीं लिख रखी होगी, मन तो कह दो और बांध दे घोड़े निया मेरे साथ, क्यों घोड़ा जो पकड़ दे उसने उस ये था जिसने वो घोड़ा पकड़ना पड़ता था। ऋषि बोला मन पकड़ लिया तेरे राजा का घोड़ा था, कह दे तेरे राजा ने। उन्होंने जाकर राजा को बता दी। राजा ने सोची आज एक आदमी ने बकवाद करी है, कल का दूसरा करेगा, सिर उठावेंगे, एक राजनीति होती है चाणक्य नीति। तो राजा ने एक आदमी को मारने के लिए 72 करोड़ सेना के 4 टुकड़े बनाए, एक टुकड़ी भेज दी 18 करोड़ 18 सोनी। और उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन में जो डले डोए थे उनकी 4 एटम बम बना दिए, सिद्धियां पुतली बना दी, एक पुतली छोड़ दी उसने 18 करोड़ सेना को, उन्होंने कतलेआम कर दिया सेकंडों में मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी वो एटम बम। कहने का भाव ये है 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस ऋषि ने, इस काल के पुजारी ने। 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर भाई सभी काल के बेख। किसा निर्णय दिया गरीबदास साहेब जी ने, परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को कैसे निर्णायक तरीके से बताया है कि ये काल की साधना करने वाले ये नाना प्रकार के ग्रुप भेख, ये सभी काल के भेख हैं। और दे धारे मौत फिर जोरा माने मौत, दिख है ऋषि और भर को बदे, दे धारे मौत फिर ये सभी काल के भेख है। अपनात्मा इसी प्रकार दुर्वासा जी के साथ श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युमन और कुछ एक यादव ने आके मजाक कर दिया था, एक लड़के का लड़की का गर्भ का स्वांग कर दिया है, कढ़ाया बांध के ऊपर का गुदड़े बांध के, और मजाक कर दिया दुर्वासा के साथ कि भी न्यू कहें दुर्वासा बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सारी बता देगा इसके पेट में के है। न्यू पूछा जाके कि महाराज जी इनका गणे दिन में ताज सूट दया करी है परमात्मा ने, साथ जी के 10-15 साल पाछे इनको गर्भ रहा, ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं आपसे, गर्भ में बेटा है क्या बेटी? दुर्वासा ने देखा ये तो बकवाद कर रहे हैं अपना जान से, तो न बोले इस तक के उत्पन्न होगा। दुर्वासा ने शराब दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा इस दिन, बाजा मारूंगा लठ। अब वो भागे, उससे उस शराब दे दिया, उस कढ़ाई से, उसको श्री कृष्ण के बताए अनुसार उस कढ़ाई को, लोहे की कढ़ाई को चूरा करके जमुना में भी डाल दिया, उसके पठेरा उग गया, घास उग गया सरकंडे से, अंत में यादव उसी सरकंडों से कटके आपस में मर गया, तलवार का काम करने लग गया। तो गरीबदास जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर के ज्ञान को गरीबदास जी बता रहे, दुर्वासा को पेता, कोपे माने कुपित हुए, क्रोधित हुए, दुर्वासा को पेता समझने आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे वह मची रुधिर की कीच। रुधिर माने खून की कीचड़ माच गया, 56 करोड़ यादव ऋषि दुर्वासा के श्राप देने से आपस में लड़के कतलेआम कर डाला। कहते हैं दुर्वासा को पेता समझने आई नीच, एक बालका ने मजाक किया था, अरे इतना जुलम कर दिया, ऐसा श्राप दिया करे। कहते हैं दे धारे जोरा फिरा ये सभी काल के भेख, अरे न मैं ऋषि कहे थे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमेश्वर प्राप्ति है, पूर्ण मोक्ष कराना ही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमने इस मनुष्य जीवन के कर्म को, मनुष्य जीवन का उद्देश्य और ये क्रियाएं उन पशुओं जैसी ही मान रखी थी जो पशु पक्षी सभी करते हैं। बच्चों की उत्पत्ति, उनके अंदर ममता और मोह, उनकी परवरिश कर देना, ये अन्य प्राणियों के अंदर भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। और इतना ही कार्य हम कर रहे थे तो मनुष्य जीवन की आवश्यकता क्या है? तो अब परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा कि इस मनुष्य जीवन का एक विशेष कार्य और है जिसको हमने प्रारंभ भी नहीं किया था। और यदि हम प्रयत्न कर भी रहे थे परमात्मा की साधना का, वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, उससे हम काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकते थे। ये दुर्गति, ये संकट, ये आपदाएं हमारी कभी समाप्त नहीं होती। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं ही आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को अपना ज्ञान दिया, उन पुण्यात्माओं ने अपनी अनुभव की वाणी और परमात्मा को आंखों देखा और परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को लिपिबद्ध करवा दिया। उन पुण्यात्माओं ने, उन श्रेष्ठ आत्माओं ने अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट लिख दिए कि हमने प्रभु को देखा, हमने परमेश्वर को देखा और वो परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, हमने वो कैसे मिले और उस परमेश्वर ने हमें क्या ज्ञान दिया, वो सब कुछ अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा दिया जो आज हमारे काम आ गया। उन संतों ने जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उनके अनुभव की वाणी और परमेश्वर द्वारा दी गई अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी और वेद और गीता जी, ये सभी एक ही समांतर ज्ञान देते हैं। लेकिन वेदों और गीता में जहां वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान भी सूक्ष्म वेद के अंदर है। जैसे 10वीं तक का सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता, और बीए और एमए का पाठ्यक्रम अन्य रह जाता है, लेकिन बीए और एमए के अंदर मैट्रिक तक के सिलेबस का भी मिश्रण होता है। तो इसी प्रकार वो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर के सूक्ष्म वेद दिया, ये चारों वेद पहले विद्यमान थे, तो सूक्ष्म वेद के अंदर चारों वेदों का भी निष्कर्ष, गीता जी का भी निष्कर्ष, पुराणों का भी निष्कर्ष और साथ में सूक्ष्म वेद तो वो है ही है। आगे की विस्तार से जानकारी उस परमात्मा ने हमें दी। परमात्मा बार बार आकर हमें याद दिलाते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तन बरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कोटि जन्म तोए भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सोकर खर बया बौरे, तू कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा किन्या, मिटी न मन की आसा। कोटि जन्म तू राजा किन्या, मिटी न मन की आसा। भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला न निर्गुण रसा। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुव राया। विष्णु नाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। असंख जन्म तूने मरते होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। असंख जन्म तो है मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर ना दे धर रे। मन तू चल रे सुके सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुके सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल अनसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुके सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुके सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अब है पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुके सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। परमेश्वर कबीर जी ने अपने उस अध्यात्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को दिया। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर प्रगट हुए थे। उनको परमात्मा आकर मिले थे, कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे। अब संत गरीबदास जी परमेश्वर के ज्ञान से परिचित होने के उपरांत सतलोक को, सचखंड को आंखों देख करके, उसके बाद फिर ये अपनी अमृतवाणी में ये विचार व्यक्त किए। अब सुख का सागर किसे कहते हैं, जहां दुख ना हो। सागर में समुद्र, समुद्र के अंदर जाने के उपरांत 100-150 किलोमीटर जब प्राणी चला जाता है किसी जहाज आदि में बैठकर, उसके बाद समुद्र के अंदर या तो वो जहाज दिखाई देता है या केवल जल ही जल होता है। जहां देखे वहां जल ही जल, जल ही जल और कुछ नहीं। इसी प्रकार सुख सागर सतलोक वो सुख सागर है जहां दुख नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं देती, यानी सुख ही सुख है। और यहां 21 ब्रह्मांड के अंदर यहां सुख नाम की चीज नहीं, दुख ही दुख है। तो हम कितने गलत स्थान पर आकर सेट हो गए। हम अपने आप यहां सेटिंग करने की सोच रहे हैं। कैसे सोच रहे हैं कि यहां मकान बनाऊं बढ़िया 2-3 मंजिल का, फिर मेरे पोते रहेंगे, पर पोते रहेंगे, फिर मेरी पीढ़ी यहां रहेंगी। परमात्मा याद दिलाते हैं, आग गए ना बावड़े ये रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पहले वाले थे वो भी चले गए, वो दोबारा आकर हमें नहीं बता सके कि हम कहां गए, कैसे दुख पाया हमने। और जो शेष हैं ये भी चले जाएंगे।

0: लोक तक गए हुए साधक भी जन्म मृत्यु के अंदर ही है। पुण्यात्माओं, तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु है, विष्णु जी की भी मृत्यु है, शिव जी की भी मृत्यु है। अब ये प्रसंग ऐसा है कि प्रथम बार, क्योंकि अभी इसका प्रकाश सत्ज्ञान का हुआ नहीं है, तो प्रथम बार जब कोई ये सुनता है इस दास के मुख से कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो ये बात गले उतरती नहीं, क्योंकि हमने लोक वेद सुन रखा था। लोक वेद के आधार से हमने सुन रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू है और यही पूरी सृष्टि के रचनहार हैं, यही सतीथी करते हैं, यही सहार करते हैं, इनके ऊपर कोई शक्ति नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये तो नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा

0: आत्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: उन आत्माओं, एक अंधा अंधेरे में रात के समय लालटेन जगा के चल रहा था, हाथ में लालटेन लिए हुए और सफर में जा रहा था। आगे से कुछ बच्चे आ रहे थे। बच्चों का शोर सुनकर उस ब्लाइंड मैन ने कहा कि बच्चों जरा ध्यान से चलना, देखकर चलना, मैं अंधा हूं। अब उन बच्चों ने सुना कि भाई ये कोई आदमी कुछ बोल रहा है। जब उन्होंने सुना कि अंधा है और लालटेन ले रहा, अंधा का है और लालटेन लिया आ रहा है, ये क्या चक्कर है? उन बच्चों ने आकर पूछा, बाबा क्या आप सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं। बच्चों ने कहा, आप जी ने लालटेन को ले रखी है, आप आंखों वालों के लिए कहीं मुझ अंधे में टक्कर मार दो, अंधेरे में मेरी टूट जा दे, इस लालटेन की रोशनी में मेरे से टल जाओ, तुम साइड पकड़ जाओ, अपनी सुरक्षा के लिए ले रखा बच्चा मैंने। तो पुण्यात्माओं, ये पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, इनकी इस दास को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस दास को वो सूक्ष्म वेद प्राप्त हो गया था जिसमें इनका सबका समावेश है और निष्कर्ष ज्ञान है, वो कबीर वाणी में, कबीर साहेब की वाणी में, परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी मुझे प्राप्त होगी थी। और उस वाणी का प्राप्त होना भी सुफिशियंट नहीं था, परमेश्वर ने स्वयं ही उस दास को अपना भेद बताया, उस वाणी को समझाया। तो ये जो वेद और पुराण और गीता जी, ये मेरे लिए लालटेन है, उन आंखों वालों के लिए कहीं वो मेरे से ना खस बैठे, मेरे साथ झगड़ा ना ठान ले, इन सदग्रंथों की रोशनी में इन आंखें देखकर वो साइड पकड़ जाए, वे सच्ची कहे रामपाल झूठ नहीं बोल रहे। और जब तक ये लालटेन ना दिखाऊंगा, जो कहेंगे तो झूठ बोला है, निंदा करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठ पटांग कहता है, और ये लालटेन दिखा दूंगा तो उस देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या फिर शरण में आ जाते हैं, वो फिर बाधक नहीं बनते हैं। तो इस बाधा को हटाने का ये एकमात्र ही रास्ता है कि रह रह कर ये ज्ञान सुनाना पड़ता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी और ब्रह्म की भी मृत्यु होगी जो इनका पिता है, दुर्गा की भी मृत्यु होगी जो इनकी माता है। तो ऐसे हम कहते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये दिखाने के लिए लालटेन दिखानी पड़ेगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है और इनकी माता भी है, इनके पिता भी हैं, श्रीमद देवी भागवत। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं और कहते हैं, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये तीसरा स्कंद, 123 पृष्ठ। अब विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है, आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सचिची और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हें तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। यदि ये दास ये कहकर के आगे कदम बढ़ा लेता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और ये लालटेन नहीं दिखाता है, तो कहीं भी ये सीडी, क्योंकि बहुत सस्ते रेट में, लागत से भी कम रेट में दे रहे हैं, तो हमारे भक्त किसी को दिखावेंगे तो वो देखे को नहीं आगे। फिर सदग्रंथों को, इनकी जीवनी को आंखों पढ़कर फिर वो विवश हो जाता है इस बात पर विचार करने के लिए कि ये तो सच्ची बात है, और सच्ची है बुद्धिमान तो फिर मानने भी गा, और इनको आंखों देखकर भी विरोध करता है तो वो अच्छी आत्मा नहीं है। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु फिर सोपन में भी ना दे। जो जानबूझ कर बकवाद करे, आंखें देख कर भी नहीं माने, विरोध करता है, तो वो दुष्ट इंसान होता है। और परमात्मा खुद कहते हैं कि इसे निकम्मे की तो सपने में भी फिर मिलन ना हो, वो ना मानो चाहे मान। अब जिनके वो फंस चुके हैं, जिन चतुर प्राणियों के वो फंसे पड़े हैं, यानी जिनसे किसी ने 20 वर्ष किसी ने 30 वर्ष नाम लिए होंगे, तो अब वो ये सोचते हैं कि हमारा अब क्या होगा। या कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं जो औरों को भ्रमित करके खुद छोटी मोटी कोई पोस्ट उस पंथ में प्राप्त किए हुए हैं, वो अपना भला भी नहीं सोचते, औरों का तो वो सोचेंगे कैसे। तो वो चातुर प्राणी बताए हैं, जो आंखों देखकर भी नहीं मानते वो मूड बताए हैं, और जो संत हैं जो बोली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं वो चतुर इंसान बताए हैं। परमेश्वर कहते हैं अपनी वाणी में कि चातुर प्राणी चोर है, क्योंकि वो सच नहीं बता पा रहा, और मूड मुगद है ठोठ, फिर संतों के नहीं काम के उनके देगड़ जोठ, कि जो जानबूझ कर भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, उन चतुर प्राणियों पर ही आश्रित है, फिर भी नहीं आता यहां उपदेश लेने नहीं आ रहा, उसके लिए बताया कि वो चातुर प्राणी तो चोर है, वो नकली संत मीठी बात बनाकर भ्रमित किए हुए हैं। परमात्मा कहते हैं बीजक की बात आ गए, बीजक नाई आथ, और पृथ्वी डोबन उतरे हुए कह कह मीठी बात। चातुर प्राणी चोर है, ये मूड मुगद है ठोठ, और फिर संतों के नहीं काम के उनके देगड़ जोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, जो आंखों देखकर इस इतिहास को भी फिर भी नहीं मानते हैं। तो मूड मुगद वो तो उन चातुर प्राणियों के साथ ही उनको और सख्ती से बांध दे, अर्थात वो वहीं फंसे रहे पड़े रहे उन्हीं जो गे। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? श्रीमद देवी भागवत के श्री ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है, और ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी मां है। अब रह गया पिता की समस्या। अब पिता की समस्या को शिवपुराण करेगा खत्म। अपने आत्माओं, हमने सबसे पहले ये निश्चय करना होगा कि जिस मार्ग पर हम चल पड़े भक्ति वाले रास्ते पर, ये ठीक है कि नहीं। और जिस दिन आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि हम जिस मार्ग पर चल पड़े ये सही है, तो आपका जो भक्ति रूपी सफर है वो निर्बाध हो जाएगा और सफल हो जाओगे। जब तक आप स्वयं ही कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, आपको संतुष्टि नहीं है कि हम जो कर रहे हैं सत्य है, तो कोई भी डगमग कर देगा। तो इसलिए आप जी को ये ज्ञान कराना अति आवश्यक है। आप बुद्धिमान हो, बालक नहीं हो। आज मानव ने कंप्यूटर बना लिए, ऐसी दूर दूर देखने वाली सूक्ष्मदर्शी बना ली, वायु यान बना लिए, आकाश में सैटेलाइट फिट कर लिए, ये के काम आओगे? अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुई ना, ये कोई ना पावर ढूंढे सैटेलाइट, ना ये कंप्यूटर, ना ये जहाज, ना टक्कर मार मार के मरा प्राणी भूखे मर के। 2 वर्ष भी वर्षा ना हुई तो गणित 3 वर्ष पकड़ जाएंगे कुछ थोड़े बहुत। तो यहां किसके लिए हम के को बद करने लाएंगे? परमाणु बम बना लिए, अपना नाशकरण की आप तैयारी कर ली, तो हमने सबसे पहले अपने मार्ग को देखना है कि हम ठीक जा रहे हैं या गलत। इसलिए आप जी को ये तैयारी करानी पड़ती है, क्योंकि ये लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये सत्संग है, इसको सत्संग कहते हैं। ये दो गाने कोई गाजे बैठ कर बजले रे, भगवान तेरा काम आऊगा, फिर ढोलक पीटन लग जा, फिर सारंगी बजान लग जा, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये ज्ञान समझ के फिर सिमरन करना है डट के दिन रात। कहते हैं नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और जब नाचे गाए भगवान मिले फिर कौन दो आगण हो। रोने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर एक विशेष कसक पैदा होगी, जैसे परमात्मा की चर्चा चलेगी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे, तो समझ लिए कि आप की भक्ति बहुत ही स्वस्थ है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। परमात्मा की प्राप्ति उसके अंदर प्रेम होने से होगी, और प्रेम बनाने के लिए सारी क्रियाएं कराई जा रही हैं, जो ज्ञान बताया जा रहा है। अब किसी वस्तु के अंदर हमारी जो चाह बनती है उसके गुणों से बनती है। जैसे मोटर गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, तो उसके गुणों का पता है, तो आदमी उसके लिए कोशिश करता है, धन जोड़ता है, लोन लेता है, कुछ भी करता है, तो उसको लेकर छोड़ पार बस आ जाता है। तो इसी प्रकार हमने इस पूर्ण परमात्मा के गुणों का ज्ञान हो गया और होगा, तो तभी हम इसकी चाह करेंगे, और फिर इसमें एक विशेष प्रेम पैदा होगा, क्योंकि हम सतलोक में रहा करते अपने पिता के पास, और वह हमें कोई दुख नहीं था। हम अपनी नालायक कीते यहां काल के फंस गए, और अब हमने वहां जाना है जहां से हम अपने पिता के साथ से बिछुड़ कर आए, हमने भारी गलती कर रखी है, और घने बिछड़े हुए ने कोई अपना पिता फिर मिल जाए। बालक ने बात दौड़ के सीने के लग जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्म और परमात्मा एक नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की ही ताते कहिए दूर। आत्मा और परमात्मा का के बीच में हमारे कर्मों की दीवार बन गई, ये बीच में झाई बन गई, एक बहुत बड़ी बीच के अंदर बाधा बन गया। तो इस बाधा को कैसे हटाया जाए। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल कैसे हटते हैं, हवा उनको तेज हवा उनको फेंक देती है इधर उधर, और सूर्य स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। आत्म और परमात्मा एक है नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। उसके लिए उस झाई को हटाने के लिए क्या बताते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। तो उस परमात्मा में एक प्यार बनेगी, कसक बनेगी, कुछ दिनों के बाद फिर आंखों से आंसू भी बंद हो जाएंगी, और ऐसे स्थिति हो जाएगी जिसको उन्मन मुद्रा बोलते हैं। नौका तेरा ऐसा क्या हो गया, तू उन्मन सा बैठा है, उन्मन सा यानी ना बोलता, ना ढंग से हंसता, ना कोई विशेष रुचि किसी वस्तु में। तो उसमें आपको ये समझ ले कि तत्व ज्ञान आपके हृदय में समा चुका है। जैसे नानक साहेब जी से किसी ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप कभी प्रसन्न दिखाई नहीं देते, खोए खोए से रहते हो, कभी खुश नजर नहीं आते। तो नानक साहेब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, किस भी दृढ़ जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उनानो केड़ा हासा। कि यहां किसके ऊपर प्रसन्न हो, ना जाने काल एक पल में के बिजली गिर दे, के जुलम कर दे, पूरा परिवार नाश कर दे, कि ना जाने कितना उदमस्तार दे, और हमें अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई देती है, फिर दिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासा वे। नानक साहब जी से पूछा, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते। तो श्री नानक साहब जी ने कहा संत जी ने, कि भाई खुश होता हूं, जैसे सत्संग में प्रेमी भक्त आते हैं प्यारी आत्माएं, तो संत यानी गुरुजी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे जो के तू आ गए, इनके कोई कीड़ा ना लग गया, किसी ने इनको भ्रमित नहीं किया, काल ने कोई अटैक करके इनको खोया नहीं हमारे से, ये परमात्मा के बच्चे सुरक्षित हैं। आप जी जाते हो यहां से सत्संग सुनकर, तो चिंता बन जाती है कि कहीं कोई काल का दूत इन पुण्य आत्माओं को भ्रमित ना कर दे। तो नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साड़ी साधी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। जब ये भक्त संत मेरे साथ आते हैं वापस, साध मिले साड़ी साधी होंदी, तो ये समागम होता है, ये हमारी खुशी है। और जब ये जाते हैं तो दिल में दिलगीरी हो जाती है, चिंता बन जाती है, ये डर रहता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्माओं को काल के दूत बर्बाद ना कर दे। और जब ये जोंके तुम आ जाते हैं तो फिर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो यहां परमात्मा यही याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपके अंदर एक विशेष कसक पैदा होगी, जरा सी भी चर्चा परमात्मा की शुरू हो जाएगी, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, और कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी आंसू भी बंद हो जाएंगे। और वैसे ही जैसे यहां संसार असार सा नजर आओगा, किसी चीज में रुचि सी ना रोएगी, वो रोना होता है, वो कसक है न्यारी। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, रो बल घट जावे, आंसू तो भगवान मिले नहीं, रो तो बल घट जा, आठ पैर का दाजना जैसे घुण काट ने खा। कहते हैं लास्ट स्थिति ऐसी आ जाएगी। कबीर परमेश्वर जी उदाहरण देते हैं, कबीर वैद बुलाई या पकड़ के देखी बा, और वैद न बेदन जान ही मेरा करक कलेजे मां। सच्ची लगन जब भगत की बन जाती है, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, घर वाले जो भक्ति से अपरिचित हैं वो चिंतित हो जाते हैं, इस बच्चे का क्या हो गया, ना त्यु गणासा बोलता, ना हमारे पास बैठता, एकांत में रहस है, खावा पी भी सी करे है, कोई खास नहीं, ओढ़ने पहरने की रुचि इसने रही नहीं। तो घर वाले नो सोचे है कदे बच्चे के कोई गुप्त बीमारी होगी हो। कबीर वैद बुलाई या पकड़ के देखी बा, और वैद ना बेदन जान ही मेरा करक कलेजे मां। सच्ची लगन जब भगत की बन जाती है, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, घर वाले जो भक्ति से अपरिचित हैं वो चिंतित हो जाते हैं, इस बच्चे का क्या हो गया, ना त्यु गणासा बोलता, ना हमारे पास बैठता, एकांत में रहस है, खावा पी भी सी करे है। तो डॉक्टर बुलाते हैं, पहले वैद होते थे नाड़िया, वो नाड़ी देखकर बांह पकड़कर चेक करते थे इसको क्या तकलीफ है। तो परमेश्वर जी अपने ऊपर ही अप आरती अप साज अप किंगर अप वज अप ताल झां जनकारा आप नचे आप देखना, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं अप मध्य आप समाऊं। तो परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर घरवाला ने वैद बुलाया और पकड़ के देखी बांह, और वैद ना बेदन जान ही मेरा कर कलेजे में, वैद मेरे दर्द को पहचान नहीं सका, मेरे तो कलेजे में करक हो रही है उस परमात्मा के लिए। तो पुण्यात्मा इसलिए आप जी को इतना तैयार किया जाएगा, जो आज दास प्रयत्न कर रहा है, आप कोई सदगुण दिखा रहा है, ज्ञान सुना रहा है, ये अभी तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे इसमें कोई मिठास सी नहीं है, इसमें इतनी मिठास हो जाएगी लास्ट में, या मिठास बने इसतेंगी, फिर इतना आनंद आओगा फिर आपको, जो परमात्मा के विचार सुनाया करेंगे, स्वाभाविक भी बीच में सत्संग हम सुनाते हैं वैसे सिंपल से, तो फिर इन सदग्रंथों के परिचित होने के उपरांत फिर आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। और अभी तो आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है, जो पुराने भक्त हैं उनको बहुत कसक शुरू हो जाती है, वो कसक तभी होती है जब आप ये परिचित हो कि जो संत वर्बली जो कह रहे हैं सच्ची से, और जो दास पहले बताया कि ये कह दे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, आप कोई प्रमाण ना दे रखे हो, तो मेरे द्वारा वो दिया गया जो ज्ञान इस दास के द्वारा आपके लिए व्यर्थ होगा और दूना दुख होगा हृदय में, हकीता गे नास्तिक दो रहे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ऐसे बता रहे, तो वो मिठास बनेगी फिर बाद में इस सत्य से परिचित होने के उपरांत। अब देखिएगा श्री शिव पुराण ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है ये सिद्ध करने की। ये शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन है? श्री हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान प्रकाशक अनुग्रह। इसमें देखिएगा रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण प्रश्न नंबर 98 के लास्ट से शुरू करेंगे, और ये है रुद्र संहिता 98 के लास्ट से। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5 खत्म हुआ, अंत हुआ रुद्र संहिता का, और छठा प्रारंभ हुआ अध्याय। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को कहा, देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा आदि आदि, उस समय तत् सद ब्रह्म, अपने आत्मा ध्यान से देखना कहते हैं, सच्चाई चोर चुरावे तुम्बड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह उपराव न सच्चाई छनी न। यहां क्या लिखा है कि उस समय ये तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। यानी तत् सद ब्रह्म, सद माने सत ब्रह्म, सत माने अविनाशी परमात्मा, उसमें केवल सतपुरुष ही था, सत एकमात्र शेष था। अब ये मिलते बात तो शुरू करें हैं वहां से, और आखिर में ये फेस हो जाते हैं। अब ये है 100 नंबर 98-99 का हमने निष्कर्ष ले दिया, और जिस परब्रह्म के विषय में अब यहां परब्रह्म कह रहा है, ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी इस प्रकार विलप किए जाते हैं। ब्रह्मा जी को नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने इन पुराणों को इसलिए सहयोग लेना पड़ रहा है क्योंकि हम इनको सच्ची मान रहे हैं, और इनमें भी बहुत कुछ मसाला हमें मिल रहा है। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, आकार बनाया, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म, यहां परम ब्रह्म है वो परब्रह्म है, इसमें बहुत अंतर है। इस परब्रह्म में और परम ब्रह्म में बहुत अंतर है। उसकी मूर्ति अब ये क्या ला के छोड़ता है, उस परम ब्रह्म यु काल को बता रहा है ब्रह्मा। परम ब्रह्म माने परम अक्षर ब्रह्म, भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस प्राशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया। तो आप जी को दास ने सृष्टि इतना सुनाई है, उसमें बताया था कि उस काल के अंदर से परमात्मा ने वह दुर्गा निकाली थी, और ये ज्ञान एक बार कबीर जी ने, परमेश्वर ने आकर ब्रह्मा को बताया था, लेकिन ब्रह्मा ने कुछ सुना कुछ ना सुना, काल प्रेरणा से स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो याद से उसका थोड़ा थोड़ा वो बता रहा है। उस प्राशक्ति को जो काल के अंदर से निकली थी, उस समय का कि रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह मन शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जबकि परमेश्वर कबीर जी ने इस काल के अंदर से दुर्गा को निकाला था, जो उसने खा ली थी, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, दुर्गा को प्रधान भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, और बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसको प्रकृति के द्वारा कहा है। प्रकृति भी कहते हैं, सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, त्रिदेव रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी को उत्पन्न करने वाली जन्म देने वाली त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के आठ भुजाएं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता है वह दुर्गा है, और आगे देखना ही क्लियर होगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इस दुर्गा ने ही अपने तीन रूप बनाए थे, एक सावित्री, फिर दूसरी लक्ष्मी और तीसरी पार्वती, और तीनों से ब्याह कर लिया था और चौथी वह अलग रह गई थी। तो ये एकाएकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये सदाशिव कहो चाहे न काल रूपी ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, तो उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है ये सब साथ है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल सदाशिव या काल ब्रह्म रूपी ब्रह्म, इसको जो परमानंद स्वरूप है, वह मनोरम क्षेत्र, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया था। इस काशीपुरी भी कहते इसको। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बेटा उत्पन्न हो गया। 102 पृष्ठ पर गणा नहीं पड़े, हम इतना बताते हैं। शिव ने कहा वत्स, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको कहा बेटा। काल ने कहा, काल ने व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का पिता शिव युक्त सदाशिव काल रूपी ब्रह्म

आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

दर बताते नैया खेते मिन्नत करते रास्ता तकते कितनी सदियां बीत गई हैं अब जाकर ये भेद खुला है जिसको तुमने अर्ज गुजारी जो था हाथ पकड़ने वाला जिस जा लागी नाव तुम्हारी जिससे दुख का दारू मांगा तोरे मंदिर में जो नहीं आया वो तो तुम ही थे वो तो तुम ही थे।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: ਪੰਦੇ

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले, तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लेन ले, तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403

0: 3 501 0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, Northeast, Calgary।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तों हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6 या विजिट करो www

कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मिया, कूड़

ब्राह्मण शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे कौ जाने पहेव, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा। एक कृष्णं सर देवा देव देवा तयात्मा, आत्मा बास देवस जे कौ जाने पहेव, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला।

राज जोग माण्यो बस्यो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम लै तर्यो निरंतर गुण गावे सनकाद आद जन काद जुगे लाग तन तन गुर तन जन्म सक्यत पलो जाग पातालपुरी जयकार तुन कब जन कल वखाण्यो हर नाम रसक नानक गुर रा।

ताकि अमृत जाद बिखै बिख खाई माया मोह परम पे पुले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते

0: की गुर रामदास राखो सरनाई।
1: सुकहो टल गुर सीविए एहनस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होए सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठी सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठियां सोही है सवना दा विसाह। सजन सचा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठियां सोही है सवना दा विसाह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला चौथा, कार पहला चौपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो हर सेवह संत भगत तिन के सब पाप निवारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। जो हर सेवह संत भगत तिन के सब पाप निवारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कह ना सको बन बारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोरचा, लग संगत साध सवारी। ज्यों कांचन बैसंतर तायो, मल काटी काटत उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर तारी। हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हमें मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करहो जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जान को कृपा करहु जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा, घर पहला चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो हर सेवह संत भगत, तिन के सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो।

0: नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवा जुग जुग फेर मटाई है ज्ञानी बुझेता है सत जुग रथ संतोख का धर्म गे रथवा उतरे तेरा रथ जते का जोर अगे रथवा द्वाप रथ पे का सत अगे रथवा काल जुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा महला पहला
1: साम कहै सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रह सब को सच समावे रिक कहै रहया भरपूर राम नाम देवा महसूर नाय लय प्रच जाए नानक तव मुखंतर पाहे जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रावन मह रंग किया कल मैं बेद अथर बन हुआ नाओ खुदाई अलह पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्चे आर पढ़े गुण है तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए पव नानक मुखंतर पाए पौड़ सतगुर।

तेल पोले बेटा मां दर प्रवान करनिया अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्सना सब भावनावां पूरियां करनिया हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान नियोटिया दियोटा धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखां प्रेमियां वल्लों ग्रह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर ग्रह प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवा प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवा नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाह।

0: दया कपा संतोख सूजत गंडी सतवट ए जने जी कहै त बांडे कत नाय टूटे न मन लगे नाय जले न जाए तन सुमान स्नान कर जोगड़ चले पाए चौकड़ मोलनाया बह चौके पाया सिखा कंचड़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मियां रात नहजी नाल तग कपाहो कतिया भामन वटे आए कोहे बकरा रिण खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाया होर नानक तग न टूटे जे तग होवे जोर महला पहला
0: नाय मने पत उपजे साला ही सतसूद डर के अंदर पाई है तगना तू तस्बूत महला पहला
1: तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवन दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेहवा तगना थी वे तका आपे वत वड़ताव गए वरा कत लै पाड़ करे भी आहो कड़कागल दसे राह सुन वेखो लोका एह वड़ा।

0: कहु ब्राह्मण कह करावो गोबर तर न जाय। धोती टिक्का तह जप माली तान मिले छा खाय। अंतर पूजा पड़े कतेबा संजम तुरका पाई। छोटी ले पखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करहनवा छुरी वगायन तन गलता। तिन घर ब्राह्मण पुरह नाथ ओ ना पहयावे ओई साथ। कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार। सर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर। मथे टिक्का तेर धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई। नील वस्त्र पहर होवे परवान मलेश तान ले पूजे प्राण। कपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना। देखे चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार। मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न साडा फिटे। तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली परेन। कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाई है। पौड़ चित्ते अंदर सब को।

0: जे मोहा का घर मोहे कर मोहे पितरी दे अगे वसे याणिए पितरी चोर करे वडिए हाथ दलाल के मुसवे करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे बहला पहला
1: ज्यों जोरू सरनावणी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खवार सुचे एह न आखिए बहन जे पिंडा तुहे सुचे से ही नानक जिन मन वसे आ सोए पौड़ी तो

सुचे अगे रखियो कोई ना पिटियो जाए। सुचा है के जेव्या लगा पड़न सलोक कोथी जाए सटिया किसे लगा दो। अन देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा पाया किरत ता होआ पाक पवित्र।

0: ला करे कन्हेरिया खसम ना पाए साथ, आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान। नानक जिसनो लगा तिस मिले, लगा सो प्रवान महला दूजा। जो जिए हो सोग वे मौका कयावा, बीजे बिख मंगे अमृत वेखो न्याओ महला दूजा।
1: नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास, जे हा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास, साहेब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा।

0: गुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर सेवह संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह ना सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोरचा लग संगत साध सवारी ज्यों कंचन बैसंतर तायो मल काटी काटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उर तारी हर हर हर औखद जग पूर जप हर हर होमै मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करहो जग जीवन जन नानक पैज सवारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करहो जग जीवन जन नानक पैज सवारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी
1: कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

ते कारोबार घट कर लवांगे ते नाम जपण लई समा रख लवांगे होर कोई सेवा दसो ये सेवा साडे लायक नहीं। भगत जी ने देखिया जीव नहीं समझदा

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stampede

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई सरबजीत सिंह जी दी रचना तों।

विश्वास घाती अकिरत घन मैं को नार खंदा सिमर मुरीदा टाडिया सतगुर बख्शंदा। पर पातशाह तुसी बख्शेंदो मैनू औगणा नाल भरे हुए नू बख्श के अपनी सेवा विच ला लिया। महाराज मैनू बख्श के अपने चरणा थां दे दिओ। छेवें पातशाह ने बचन कह भाई गुरदास तेरे वर्गे गुरसिखां दी चरण धूड़ नाल पापियां दा भी उद्धार होएगा तू क्यों नहीं मुक्त होएगा। भाई गुरदास साध शाबाश तुसी सिखी दा शिखर छू लिया। सिखी दा शिखर पता की है? क्योंकि गुरसिखी बारीक है खंडे तार गली अत भीड़ी। गुरसिखी कमाउणी बहुत बारीक है कल्ला बाणा पहन लेना कपड़े पहन लेने केस धारण करके ककार धारण करके यह सात संगत सिखी का पहरावा एडमिशन हो सकती है पर सिखी की कलास इतों अगे तुरती है। सिखी का शिखर बहुत उच्चा है जिथे सब कुछ कर करा के खाक रहना पैंदा रंजक मात्र भी होमे नहीं गुणा नाल सिख भरिया होवे पर 24 घंटे गुरु नू कहिंदा रवे जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा। छेवें पातशाह ने कहा गुरसिखी पाणा मन्ने आ। तुसी ओ गुरसिखो जिन्हां भाणे विच रह के सिखी दे शिखर नू छू लिया। भाई गुरदास तुसी सिखी दे शिखर नू छू लिया गुरसिख।

श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ते बड़ा प्रभाव पिया। इन्नी निर्माणता, इन्नी निम्रता, जिन्होंने सिखी दे शिखर नूं छूया वह बंदे अत दी निम्रता विच रहे। साध संगत यह प्रभाव श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ते पिया। इस तों बाद एक बहुत वड्डी होर घटना घटी। जिदन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का विआह शादी आनंद कार्ज रखिया ना, उदन छेवें पातशाह अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर साहब नूं करतारपुर बयान आए। भाई लाल चंद दी सपुत्री धन माता गुजरी जी दे नाल आनंद कार्ज होया। ते जदों साध संगत छेवें पातशाह बरात लैके पहुंचे ना अपने पुत्र दी, ते सामने लाल चंद पिंड दे पतवंते बंदियां नाल बरात दा सत्कार करन लई खड़े। सतगुरु आके बरात लैके पुत्र दी सजना नाल पहुंच गए होर गुरु दे प्यार वाले सिखां नाल। लाल चंद अदब नाल गल विच परना पा के अगे होया, हजूर दे चरणा विच हाथ जोड़ के मत्था टेकन लगा। महाराज एक गरीब सिख नूं माण दिता है, महाराज तुहाडा पुत्र सच्चे पातशाह, तुसी इन्नी वड्डी हस्ती गुरु की पदवी ते, मैं एक गरीब जिहा सिख, मेरी बच्ची का रिश्ता अपने पुत्र वास्ते लैके बड़ा वड्डा माण दिता है। महाराज जदों हाथ जोड़ के सिर झुकाउण लगे, बाहां पकड़ के छेवें पातशाह ने रोक लिया। कहिंदे नहीं, अज तुसी लाल चंद जी साडे सिख नहीं, अज तुसी कुड़म हो। कुड़मां दी थां पैरां विच नहीं, कुड़मां दी थां सीने विच हुंदी है। हजूर ने सारी संगत दे सामने वह गरीब सिख भाई लाल चंद नूं मोढ़ियां तों पकड़ के गल नाल लाया। कहिंदे कुड़मां दी जगह पैरां विच नहीं, कुड़मां दी थां सीने विच हुंदी है। ये सानू दसना सी दुनिया दे लोकों, किन्ने भी अमीर हो जाओ, वड्डे हो जाओ, रिश्तियां दा सत्कार करना ना भुल्यो। जेड़ा बंदा कवे ना फलाना रिश्तेदार ते छोटा है, वह कुड़मा ने दिता की है, उन्हां कोल है की है, माफ करियो, वह बंदे रिश्ते तोड़ बैंदे ने, ना वह गुरु की नज़र विच प्रवान ने, ना वह दुनिया की नज़र विच। जदों विआह शादी आनंद कार्ज हो गया, डोला तोरन लगे ना, ते छेवें पातशाह दी अखां दे सामने लाल चंद अपनी धी दा डोला तोरन लगा। हाथ जोड़ के कहा, सच्चे पातशाह मेरी औकात नहीं सी तुहाडे नाल रिश्ता जोड़न दी, मैनू गरीब नूं तुसी माण दित्ता है। महाराज किथे मैं गरीब सिख, किथे तुसी मेरी पीरी दे मालक, दीन दुनी दे पातशाह, मेरी औकात नहीं सी तुहाडे नाल रिश्ता जोड़न दी। महाराज तुसी किरपा करके जोड़िया है, एक गरीब दी बेनती है, मैं कोई दाज नहीं दे सकिया, सिर्फ रुखा मिस्सा भोजन प्रशादा छकाया। महाराज धी तो सिवाए मेरे कोल देण वास्ते होर कुछ नहीं। छेवें पातशाह ने घुट के सीने नाल लाया, अखां पूंझ के लाल चंद दियां इक गल कही, तू बहुत वड्डा दान दिता है लाल चंद, जेड़ा धीआं नूं पाल के दूजे दे भले वास्ते विआह दिंदा है, दूजे घर पालिया खुद, ते ओह धी ने घर किसे दूजे दा वसाउणा है, ओहदा घर वसाउणा है, ओहदा घर सवारना है, इस तों वड्डा दुनिया विच दान नहीं है कोई। सतगुरां कहा, लाल चंद जिने धी पाल के विआह दित्ती, इस तों वड्डा धी तों वड्डा होर की दान हो सकदा। इहनूं लोक पहलां कन्या दान कहिंदे सी, जदों लोकां नूं सोझी समझ सी उदों लोक अदब सत्कार करदे सी। साध संगत छेवें पातशाह ने खुद बचन कहे, जिन तन जाए अर्पण की नंग, भाई जिने धी पाल के व्याई है, साडा घर वसाउण लई, साडी वंश वधाउण लई, साडा घर सवारन लई, इस तों वड्डा लाल चंद होर की हो सकदा है दान, इस तों वड्डा होर की हो सकदा है दान ते दाज। साहब ने कहा, जिन तनुजा अर्पण की नंग, तनुजा दा अर्थ हुंदा धी, तिन पाछे क्या रख ली नंग, भाई उन्हें पिछे की रख लिया। सतगुरां इन्ना वड्डा माण दिता, यह प्रभाव श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ते बड़ा गहरा पिया। इहनूं गुरु कहिंदे ने जिहड़ा इन्ना वड्डा माण बख्शिश करे। ते साध संगत मैं कई बार बेनती की, पहला एक विच दौर आया जदों धीआं नूं लोक साड़न लग पए, धीआं नूं लोक दाज की बली देण लग पए, बड़ा रौला पिया, धीआं दाज की बली चढ़ गई, कित स्टोप फट गया, कित गैस फट गया, कित धीआं नूं मार दिता दाज दे लोभियां ने, यह रौला रहा समाज विच। यह गल सच्ची रही है कि दाज दे लोभियां ने कई धीआं मारियां ने, गौरमेंट नूं कानून बनाउणा पिया। फिर विआह शादी तो 7 साल तक हुण डोरी का केस पैंदा है, तुहानूं सब कुछ पता है, डोली दे केस विच 3-4 बंदियां नूं सजा हो सकदी है करदे, गौरमेंट नूं कानून बनाउणे पै गए।
पर हुण हालात बदल गए। तुहाडी की सलाह, हुण लोक दाज लैणो हट गए ने? हुण दाज साध संगत लैंदे ने चलदा हुण भी उस तरह, पर हुण ट्रेंड दूजे तरह बदल गया। पहले लड़के वाले दाज मंगदे सी, धीआं वालिआं नूं दाज देना पैंदा सी। हुण माफ करिओ, हुण लड़के वाले नहीं मंगदे, हुण धीआं वाले दाज मंगदे ने। 6.5 बैंड है लड़की दे, दसो की दिंदे हो? ये दाज नहीं तो फिर होर की है? 6.5 बैंड ने वह बच्ची बारे, वो अरमाना का कोई नहीं कुछ सोचता। साध संगत बच्चों के अरमाना का कतल किया जा रहा है, बच्चिया के मन के उन्होंने विचार के उल्ट। सिर्फ पैसों के लालच करके अधे अधे पैसे ला दो जी, ये व्यापार बिजनेस नहीं तो होर की है? साध संगत हुण फिर हालात इन्ने भैड़े हो गए ने, वह बच्चिया मजबूरी बस पेक्यां दा कहना मन के लड़के वालियां तो पैसा लवा के चलिया जांदियां ने, ते जो कुछ करके वह छड़ दिंदियां ने, परत के फोन नहीं हुंदा। लोग डिप्रैशन में जाण लग पए।

पजे पग पढ़ो सारे कहो नानक नर बावरी क्यों ना बजे बग ए बावरे बंदे हुण क्यों नहीं वाहेगुरु कहिंदा हुण ते बुढ़ेपा आ गया जिन्हां दी उम्र 40 साल तो टप रही है हुण ना ढिल करिया करो आखो सतनाम श्री हजूर।

आखो सतनाम श्री की जपया हुआ वह गुरु काम आंदा है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बचन कहे, हर जस रे मना गाए ले जो

ऐ मेरो। अगली पंक्ति बड़ी प्यारी है, शायद अपने कम आवे। अज हूं कश बिगड़ियो नहीं, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़िया, अजे ते शरीर चलद, स्वास चलते ने, तू तुर सकना, वेख सकना, बोल सकना, अजे की बिगड़िया तेरा कुछ भी नहीं। अज हूं कश बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावे, अजे तू गा सकना, पर इस तो बाद फिर हजूर कहणगे जान बूझ के बावरे तैं काज बिगारे ओ। किसे ने तेरा कम नहीं बिगाड़िया, तू जान बुझ के ही अपना बिगाड़ लिया, किसे ने नहीं बिगाड़िया। रब ने सानू दुखी नहीं किया, असी आपे दुखी हुए हैं। रब ने रोग नहीं लाए, सानू आपे लगे ने, क्यों? तोड़ा खाना पीना सोना गलत हो गया, जागना गलत हो गया। कदे पंछियां दे कोई हॉस्पिटल विखे ने, सूरज डुबदा है वो अपने आलने विच आ जांदे ने, सूरज चढ़दा है सवेरे उठ के पंछी तुहाडे बनेरियां ते गाण लग पैंदे ने, ओ भलिया तू अपना सोना खाना विगाड़ लिया, दो दो बजे तक मोबाइल विखणे ने, बीमार नहीं होना ते की होना। रात नूं डॉक्टर कहिंदे ने खाना हल्का खाओ, पढ़े लिखे हो तुसीं कहिंदे ने ना, रात दा भोजन हल्का भोजन होना चाहिए, पर जे रात नूं 10-10 11-11 बजे चंपा ते मशरूम चुके लियांदे हो, जे तुसीं घर वे साह संगत आ चीजां लियांदे हो, फिर बीमार किने कीता? रब ने ते नहीं कीता। ताइयो कहणगे जान बूझ के बावरे तैं काज बिगारे ओ, तू खुद अपना कम बिगाड़े है। अमृत वेले पंछी जागदे ने, तू 9 बजे उठदे, किसे ने तेनू नहीं बिगाड़िया, तेरे घर विच कलेस किसे ने नहीं पाया, तू आपे पाया होया। जान

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-453-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, Northeast Calgary,

0: कैसिडी ही इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण ले तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुन सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, जो हर सेवहे संत भगत, तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, हर गुण कह ना सको बनवारी।

अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 666 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
धन गुरु रामदास पातशाह जी का आगमन पुरब मनाने वास्ते हर साल की तरह सतगुरां दे वसाए हुए इस नगर के अंदर वखरे वखरे गुरु घरां दे अंदर रोजाना ही लड़ीवार प्रोग्राम किए जाते हैं। सतगुरु लाहौर की धरती ते जिन्हों आप चूना मंडी कहने भाई हरदास जी दे घर 1534 दे विच इस मात लोक दे अंदर आए। पहला माता जी अकाल चलान कर गए, फिर सत्कार योग पिता जी भी अकाल चलान कर गए। नानी नू बासर पिंड तो जिड़ा अपने बिल्कुल अमृतसर साहब दे नेड़े आ, इथों लाहौर जान दी जरूरत ता पई जे चाचे ताया ने संभाल नहीं कीती। नानी दोते नू अपने नाल लैके बासर पिंड दे विच जिथे सन साहब गुरुद्वारा है इथे सतगुरु महाराज दे टिकाने ने गुरु अमरदास पातशाह जी दे भी। ये समा है 1541 दा। सतगुरां दी पहली मुलाकात होई बजुर्गां दे नाल, हाले गुरु नहीं बने। गुरु अमरदास पातशाह जी पिता वाला प्यार गुरु अमरदास जी पासों मिल गया। सतगुरु महाराज गुरु अंगद देव जी महाराज सचे पातशाह जी की शरण विच आ गए। सतगुरां दे दर ते रह के बड़ी कालना काली, आप जी जानदे हो 12 साल जिस उम्र दे विच गागर चुक के, केवल गागर नहीं ये अमृत वेले दा नितनेम है, बाकी सारा दिन भी सेवा चलती रहिंदी। सतगुरु महाराज ने सेवा कीती ते जिसका जिक्र वो आप अपनी बाणी दे विच करदे ने ना, हस्ती सिर जो अंकस है अहरन ज्यो सिर दे मन तन आगे राख, वो भी सेव करे सेवा कीती मालक दी खुशी प्राप्त होई। धन गुरु अमरदास पातशाह जी गुरु बन गए। जिवें हुक्म होया सी करतारपुर तो जोत उन्हां दी अंदर टिकाई ते आख्या पुरखा आज तो बाद तुहाडा टिकाना करतारपुर नहीं होवेगा, खंडूर साहब होवेगा। अज खंडूर साहब रहिंदिया गोइंदवाल साहब जिहड़ा नगर वसाया गया, इशारा कर दिता बख्शिश करके कि हुण तुसी खंडूर साहब नहीं रहोगे, गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते चले जाओगे। सतगुरु महाराज 1552 दे अंदर गुरता गद्दी प्राप्त करदे ने ते सत्संगत सारे रिश्तेदार मित्र दोस्त गुरसिख इन्हां नूं गोइंदवाल साहब अंदर वसो करन दा सद्दा दिता जांदा है। ते गुरु रामदास पातशाह जी जिन्हां नूं वड्डे होण करके जेठा जी भी कहा जांदा है, भाई जेठा जी भी आपां कहिंदे आ, ये भी गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते आ गए। किरत करदे ने, किरत कोई भी माड़ी नहीं, मैं फिर बेनती करा किरत माड़ी नहीं, पर किरत दे अंदर
चोरी नहीं होनी चाहिए, ठगी नहीं होनी चाहिए, हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। किरत भावे घुंगनिया वेचन की करते नाल सेवा भी गुरु दर ते करते ने। सतगुरां ने कृपा की 1553 के अंदर अपनी बच्ची बीबी भानी जी का रिश्ता जिहड़ा है गुरु रामदास पातशाह जी दे नाल कर दिता गया। पर सात संगत, मैं सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना दे बचन पढ़ रहा सी, वो कहंदे ने भी जवाई मिट्टी का माधो भी होवे ते ओ मान इन्ना करदा है कि सहुरे घर वालियां नू फिक्र पै जांदा है भी जवाई आया है, इंदी हर तरह नाल खातर कीती जावे। पर सतगुरु भी जवाई बन के गुरु घर दे अंदर रह रहे ने, सानू उन्हां दा गुरपुरब भावे आगमन होवे भावे गुरियाई पुरब होवे मनांदियां ये चेते रखना चाहिदा है कि रिश्तेदारी जे जवाई वाला रिश्ता प्राप्त करके भी निभाउणा है ते जाच निम्रता दी मिठत नीवी नानका वारी गुरु रामदास पातशाह जी पासो सीखनी चाहिदी। सतगुरु ते कृपा होगी पर सेवा जिहड़ी है वो चल रही है। अखीर समा आया, मैं बेनती कर देवा, सतगुरु महाराज ने कृपा कर दी हुण आप जी पावन बाणी नूं कदी पढ़ो। सद बाणी का पाठ रामकली राग दे अंदर बहुत किया जाता है, खास तौर पर जदों अंतम संस्कार हुंदा है या आपां अंतम अरदास करदे आ, खंड पाठ का भोग पैंदा है। मर्यादा दे विच नहीं लिखिया होया, मैनूं माफ कर दिओ, मर्यादा विच नहीं पर परंपरा है। मेरा यह विशा नहीं कि पढ़ना चाहिदा है जां नहीं पढ़ना चाहिदा, परंपरा मुताबक सद बाणी का पाठ किया जाता है। तो आप बड़े प्यार नाल पाठी सिंघा पासो ये पाठ सरवण करते हैं। इस दी पंजवीं पौड़ी मैं आरंभ करांगा। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंगुर भावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। फिर महाराज ने आख्या हर गुरु महाराज की कृपा हुई गुरु अमरदास पातशाह दे उते, ते आपां बचन पढ़दे हां, रामदास सोढी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सनमुख होवा रामदास पैरी पाए जियो, सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवे नाही फिर सतगुर आन निवाया, हर गुरे पाना दी वड़ियाई हर मिलिया हर गुरे पाना दी वड़ियाई। महाराज आखदे ने वाहिगुरु परमात्मा की कृपा द्वारा सतगुरु बोले ते रामदास जिहड़े सोढ़ी खानदान दे नाल संबंधित ने उन्हां नूं इह दात प्राप्त होई, सच्चे शब्द की सच्ची राहदारी उन्हां नूं प्राप्त होई। जो सतगुरु बोले सारे गुरसिखां ने सतगुरु दे पिछों उसका मान किया, पहला सतगुरा आप मत्था टेकिया ते फिर पुत्र मोरी जिहड़ा सी ओह सनमुख होया ते फिर हौली हौली सारिया ने मत्था टेकिया, जिहड़े आकी वी सन उन्हां नूं भी गुरु अमरदास पातशाह जी ने इशारा करके समझाया। पर गुरु रामदास पातशाह जी जदों इस पदवी नूं प्राप्त करदे ने ते सात संगत निंदक दुष्ट सारे जिहड़े सन उन्हां नूं भी तार दिता ते गुरु घर दे नाल उन्हां नूं जोड़ दिता। मैं फिर बेनती करा
मोरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाई दियो सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया। हुण आप जी पढ़ो पट्टा नू महाराज आखदे ने आप जी बहुत बारी ए बचन पढ़ दियो न राज जोग तखत दियन गुरु रामदास प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद तारन मनुख्य जन कियो परगास गुरु अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान अकथ कथा ज्ञान। महाराज आखदे ने गुरु अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान। केड़ा गुरु अंगद देव जी नू खजाना मिलिया गुरु नानक पातशाह जी की कृपा दे नाल ओ जेड़ा अकथ कथा दा सत्संगत ज्ञान है सोजी है। पंचपूत बस कीने जमत ना तरास काम क्रोध अहंकार सारे वस विच हो गए हुण त्रास नहीं इन्हां दा डर नहीं जमत तो भाव बिलकुल ही जमत दा भाव इत्थे जम नहीं जमत दा भाव है जन्म तो ही बिलकुल इन्हां दा डर जिहड़ा है वह मुक गया। गुर अमर गुरु सिर सत कलयुग राखी पत अगन देखत गत चरण कमल जास। फिर गुरु अमरदास ते कृपा होई गुरु अंगद देव जी महाराज दी ते गुरु अमरदास पातशाह जी ने जो कृपा की आपा ए भी कर पढ़दे हां कोई सिफारिश नहीं इथे कोई सिफारिश नहीं। मैं फिर बेनती करांगा इतिहासकार ने बड़ा कुछ लिख दिता कईयां ने कह दिता भी बीबी भानी जी की सेवा नूं फल लगा नहीं बीबी भानी जी भाड़े की मूर्त हैं वो अपनी सेवा करते ने पर प्रतख गुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने आप उस वेले कृपा की जो भट्ट कहते ने सब विदमान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दियन गुरु रामदास। कोई सिफारिश नहीं मन गुरु का मनिया जिवें गुरु नानक पातशाह जी का मन मनिया ते सत्संगत कृपा गुरु अंगद देव जी महाराज दे उत्ते हो गई। गुरु महाराज का मन मनिया ते फिर गुरु अमरदास पातशाह जी ते कृपा हो गई। इस तरह मन मनिया ते गुरु रामदास पातशाह उत्ते कृपा हो गई। शब्द मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तखत दियन गुरु रामदार क्योंकि गुरु नानक निकट बसे बनवारी तिन लैना थाप जो जगतारी लैने पन धर्म का किया अमरदास भले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर तप्यो हर का नाम अखै निधन प्यो। मैं फिर बेनती करा गुरु नानक ने कृपा प्राप्त की गुरु अंगद देव जी उते कृपा हुई मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया थापिया लेना जीव दे गुरियाई सिर शतर फिराया कि आप पढ़ते हैं ज्योति जोत मिलायक है गुरु नानक रूप बटाया। गुरु नानक पातशाह जी ने रूप बदले ने पहला नानक दूजा नानक तीजा नानक नहीं नानक दा पहला स्वरूप नानक दा दूजा स्वरूप नानक दा तीजा स्वरूप क्योंकि जोत ओहा जुगत साई सहकाया फेर पलटी है जुगत ओहो रही जोत भी ओहो रही केवल शरीर जिड़ा है वह सत्संगत दसवें जामे तक बदलते रह ते अखीर उथे आके गल टिक गई जिड़ी पहले जामे दे अंदर कही ना शब्द गुरु सुरत तुन चेला ते फिर आख दिता आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। बेनती गुरपुर मनान दा लाभ की है मुबारक है कीर्तन दरबार होन मुबारक है लंगर जिहड़े हन ओ बनाए जान पर वास्तव विच ये चेता रखना है बाबारियां कहानियां पुत सपुत करेन। आप गुरु रामदास पातशाह जी दा गुरियाई पुर मनांदिया ये चेते रखना भावे सा संगत थड़ा बनान दी गल आई भाई रामा जी भी आग्याकार ने तीन वारी उन्होंने बचन मनिया है ते चौथी वार कह दिता सतगुरु जी आप जी भुलदे हो तुहाडी उम्र वडेरी हो गई है मैं ता थड़ा तिवें बनाना
ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਥੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਵੇਂ ਬਣਵਾ ਲਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੜਾ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਥੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਕਰੋ ਨਿਸਤਾਰਾ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਬਖੀਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਹਰ ਸੇਵਕ ਪਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਭੁੱਲੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀ ਏ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੀ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਵੇ ਲਾਲੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਭਗਤ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਰੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
गुरु नानक पातशाह जी जात पात के भेव भाव न छड़ के हाले को तो बड़ा बोलबाला वर्ण वन का पर भाई लालो नवाजे मलक भागो ने नहीं नवाजिया। आप जी जी साखी पढ़ते हो ना जदों मलक भागो ने सतगुरु महाराज न बार बार कह के अपने कोल बुला लिया तो सतगुरु महाराज चले गए। उन्हें अपनी माल पूड़िया का मान किया कोदड़े की रोटी नकारिया तो सतगुरु महाराज ने ठीक है चित्र बनाने वाले ने एक हाथ में कोदड़े की रोटी है एक हाथ में माल पूड़े ने पर सतसंगत माल पूड़िया के निकल रहा है। आप जी वेखते हो जिहड़ी गल कही सी ना जे रत लगे कपड़े जामा होए पुलीत ध्यान देवियो जे रत लगे कपड़े जामा होए पुलीत जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। महाराज आखदे ने जामे नू लहू लग जाए खून लग जाए ते नमाज पढ़न लग्या वह जामा पाया नहीं जाता पवित्र नहीं मन्या जाता अपवित्र मन्या जाता है अपवित्र जान के उन्हों पाया नहीं जाता। ते गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे मलक भागो ध्यान रख जिमें बाहरी तौर ते जामे नू खून लग जावे ते जामा अपवित्र हो जाता है इसे तरह जेड़े मानसा का खून पींदे ने मनुखां का खून पींदे ने पराया हक जिस बारे आप पढ़ते हक पराया नानका उस सूवर उस गाय गुरपीर हामा ता परे जा मुरदार ना खाए जेड़े ओ पींदे ने मानसा का खून उन्हां दा हिरदा किवें पवित्र हो सकता है। सतसंगत दसिया मलक भागो तेरे पदार्था विच गरीबां दा खून है ते मलक भागो दी सच्ची सुची किरत दी रोटी है जिस विचों दुध निकल रहा है। अज भी रोड़ी साहब गुरुद्वारा जिस नाल बड़ा वड्डा इतिहास जुड़िया होया है आ जिहड़ा छोटा कल्लू घर है ना उसे गुरु घर तो ही आरंभ होया सी जसपत राय दा सिर वड्डिया सी ना ते उस वेले लखपत राय ने सौ खा रही सी। आप जी नूं पता होगा रोड़ी साहब गुरुद्वारा ईमनाबाद जिथे ये मुढ बजा छोटे कलू घरे का मैं बेनती कर रहा हा भाई लालो जी दे नाल संबंधित है। भाई लालो जी का जन्म दिहाड़ा मनांदिया होया सानू जरूर यह चेते रखना चाहिदा है वंड के छकना नाम जपना ते धर्म की किरत करनी धर्म की किरत वंड छकना ते नाम जपना इस नूं भाई लालो जी ने अपने जीवन का आधार बनाया। अज सतगुरां दे गुरियाई पुरब दी ते भाई लालो जी दे जन्म दिहाड़े दी आप सारियां संगतां नूं बहुत बहुत वधाई। मैं जिवें पहला बेनती कीती है मुबारक है खंड फाड़ रकाइए मुबारक है कीर्तन करिए लैक्चर करिए मुबारक है असी सब कुछ लंगर पानी वरताइए पर नाल दी नाल सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बाणी गाविया सुनिया तिन का हर थाए पावे जिन सतगुरु की आग्या सत सत कर मानी। बस सानू सारिया नू ए जाच आ जावे कि असी सतगुरां दी बारी नो सत सत करके मन लईए ते फिर की होवेगा सतगुरु की जिसनू मत आवै सो सतगुरु माए समाना ए बारी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नाबा। आप सारिया नू बहुत बहुत वधाइया आओ सतगुरा ने जो मुख वाक साडे उत्ते बख्शिश कीती है तिसदा आपा अखरी अर्थ सांझे करिए सारे सुरतियां बिरतियां नू टिकाओ जी गज के बोल।

0: साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। आठ ही पहर चौठ साठ घड़ी में एक घड़ी जो सास समागम करे निज कर जात है। रखो सानू भी वाहिगुरु जी अपनी उस संगत दे अंदर जेड़ी तुहानू प्यारी लगदी, एक कृपा साडे उत्ते करो।
1: हर गुण कह न सको बनवारी,
0: वाहिगुरु दे गुणा दा अंत नहीं पाना, ये बारी ने सानू समझाया। क्योंकि जेवड़े आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, अंत नहीं पाना। पर गुण गाने जरूर ने, तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच में रहूं रजाई। क्योंकि जेवा एक कमन गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लई है। तेरे गुण बहुते हन बनवारी, ये वाहिगुरु परमात्मा दा सिफाती नाम है। वैसे कृष्ण नाल भी वरत्या जांदा है, पर बाणी विच वाहिगुरु परमात्मा वास्ते वरत्या गया है। वाहिगुरु जी मैं तेरे सारे गुण बयान नहीं कर सकदा।
1: हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी।
0: असी पापी हां, मन लोगे पापी बंदा कदी भी ये गल मनन दे लई तैयार नहीं। हां गनका ने मन लिया, अजामल ने मन लिया, ते सत्संग तर गए। अज बंदा पाप भी कीती जा रहा है, ते जिहड़ी चर्चा है ना जालपा ते वितंडा, इहदी वरतों भी कर रहा है। अपनी गल नू वड्डी करके दस रहा है, ते दूजे की सच्ची गल नू भी झूठी दस रहा है। ये मीडिया का युग है, जालपा ते वितंडा ये चर्चा असी नहीं करनी, वाद ते हेत करनी। पर महाराज कहिंदे ने अज इस पासे जोर लगा होया, असी मनन दे लई तैयार नहीं। महाराज आखदे हन असी पापी आ वाहिगुरु परमात्मा जी ते साडी हालत

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी उर्दू मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 एफएम इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बेटा उत्पन्न हो गया। 102 पृष्ठ पर गणा नहीं पड़ा, हम इतना बताते हैं। शिव ने कहा वत्स, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको कहा बेटा। काल ने कहा काल ने, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का पिता शिव युक्त सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। जैसा यहां देखिएगा ये 101 पृष्ठ पर है कि उस काल रूपी ब्रह्म ने, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म है विष्णु जी का पिता और यह प्रकृति दुर्गा है इनकी माँ। ठीक हुआ, अब शिव ने उसका नाम धर दिया विष्णु। ये तो हो गया विष्णु उत्पन्न हुआ दुर्गा और काल से। अब यहाँ ये छठा अध्याय समाप्त हुआ। सातवें में ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्वोत्पन्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, यानी जिस तरह विष्णु की उत्पत्ति फिर मेरी उत्पत्ति दुर्गा से हुई और काल के संयोग से। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है, बता। मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ और किसने यस इस समय मेरा निर्माण किया है। अपना आत्मा अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 में और प्रश्न नंबर 110 पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और ये लास्ट में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब यहां चार हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन, और इनसे न्यारा जो है वो शिव, ये गुणातीत माने गए। इन तीनों मत गुण है रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु स्तमगुण शिव शंकर, और ये काल भी शिव रूप विष्णु रूप ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो शिव पुराण में जिसने शिव रूप में दर्शन करे उस व्यक्ति ने शिव पुराण की रचना की, तो इसको हीरो बना लिया शिव को, सदा शिव काल को। अब यहां ये अनुवाद करता पीछे तो असमंजस में पड़ गया कि विष्णु शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन यह नहीं छुप पाई इनसे, इन तीनों से अलग है। फिर यह एक समस्या उत्पन्न हुई, कहने लगे तो रुद्र के बारे में कहा है, शंकर के बारे में नहीं। ये समस्या हल होगी अभी दिखाते हैं 24-25-26 पे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई होगी, वो कह मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप, दोनों लड़ पड़े। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण ये 24 पृष्ठ पे। जब ये दोनों का झगड़ा हो गया विष्णु और ब्रह्मा जी का, तो बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया काल में, तेजो में स्तंभ पिलर, तो ये दोनों की लड़ाई बंद होगी। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया ये 25 पृष्ठ पे। यहां से देखेंगे हम, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, जब ये काल आकर खड़ा हो गया तो दोनों ने आपस में चर्चा की इस काल के साथ। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तव्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। तो भगवान शिव बोले, यू काल बोला, आगे ज्यादा ना बताऊं, यहां लेते हैं, अब 26 पृष्ठ पर आ जाते हैं। ये काल बोलता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सखीथी नामक दो कृत प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा तो यहां तक हो गए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे जैसे ही आकार के, मेरे जैसे ही वेशभूषा वाले रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कृत्यों कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। अब ये दो तगन मां विष्णु महेश हो गए, और दो ये हो गए रुद्र और महेश, चार हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है यो काल है। हमने यही सिद्ध करना था। यहां देखिए, मैंने इनके बारे में बता रहा है कि रुद्र और महेश तो मेरे जैसे ही हैं, इन मेरे जैसे ही ये वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं, वे रूप वेश वेशभूषा कृत्य वाहन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब ये क्या बताता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर श्रवण करने से मेरा ही सदा श्रवण होता है ब्रह्म का। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिमी मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये पांच अकार मकार और अकार का और इस उकार मकार बिंदु और ये नाद, इन पांचों से मिलकर ये एक ओम मंत्र हुआ। इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अयो से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। अपने आत्माओं, इससे फिर गीता जी का लिंक जुड़ेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, गीता ज्ञान दाता ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। तो यहां भी ये कह रहा है कि ओम मेरा एक अक्षर ओम है। और इसने देख नीचे नाड़ी ने क्या लिख दिया, वह आकार रहित अकार आदि मकर कर्म से और मकार आदि कर्म से कर्म से प्रकाश माया। ओम नमः शिवाय शिवाय यह पंच अक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय में ये अकार मकार नो के पांच से, और जबकि स्पष्ट कर रहा है कि इस प्रणव मंत्र में, इस ओंकार में ही पांच हैं। ये उत्तरवर्ती मुख से अकार, दक्षिण मुख से पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण से मकार और पूर्ववर्ती से बिंदु, मध्यवर्ती से नाद, ये पांच अयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अयों से एकीभूत होकर यह प्रणव मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये ओम नमः शिवाय इसने लिखा भी अलग भाषा में है, ये राइटिंग में, ये मूल संस्कृत में नहीं है, ये मन गढ़ंत है। लोक वेद अनुवादकर्ता ने हिंदी वाली में फंसा दिया, लेकिन संस्कृत मूल भाषा में ऐसा नहीं है ये। तो अब हमने ये मंत्र मान लिया, ओम भी छोड़ दिया, ओम नमः शिवाय, तो ओम भी माया आ गया, इसके नहीं सोच लिया हमने ओम नमः शिवाय, इसकी लाजी रटना। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी ये काल रूपी ब्रह्म है, जिसको सदा शिव भी कहते हैं। ये अपने आत्माओं प्रसंग चल रहा है, अग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। और इस काल का विधान है कि यहां कोई भी जीव स्थाई नहीं है। अब क्या बताया है कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी लेकिन उसका लंबा चौड़ी बहुत बड़ी आयु है। कैसे है? एक चतुर्युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में 43,20,000 वर्ष होते हमारे मनुष्यों के, और ऐसे ऐसे चतुर्युग के 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1,000 चतुर्युग की रात। हम सीधा लेते वैसे तो 1,008 होते हैं। इस प्रकार 30 दिन रात का बना हुआ एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का, 12 महीनों का एक वर्ष हो गया। इस प्रकार 100 वर्ष बने, जो इतनी आयु होगी ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक आयु है शंकर भगवान की। ये तीनों मरेंगे। उसके बाद 70,000 बार जब ये शिव मर लेंगे, शंकर मर लेंगे, तमोगुण शंकर मर लेगा, काल का पुत्र, इसकी 70,000 बार ऐसे इनकी मृत्यु हो लेगी। इतने ये 84,00,000 योनियों में जा चुके होंगे और नए पुण्य आत्माओं को काल अब पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके ऐसे इन पोस्टों पर विराजमान करता रहता है। तो तब एक काल की मृत्यु होगी। गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये काल भगवान कहता है, ब्रह्म कहता है, गीता बोलता हुआ श्री कृष्ण में प्रवेश करके, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। मेरा जन्म और मृत्यु जो होता है वो अलौकिक है। कैसे? ये काल जब मरता है 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी तमोगुण शिव मर लेंगे तब, तो यू एक युग होता है उस अक्षर पुरुष का, परब्रह्म का, जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी। ऐसे ही फिर 1,000 युग का दिन, 1,000 युग की रात, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, परब्रह्म की, 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। ये ब्रह्म जो है काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको सर्व पुरुष कहते हैं और इस परब्रह्म को अक्षर पुरुष कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में इन तीनों का विशेष वर्णन है, परम अक्षर ब्रह्म का और इस सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष का। तो ये भी मरेगा। अब ये काल कहता है कि मेरा जन्म और कर्म अलौकिक हैं। कैसे हैं? कि ये यहां मर जाता है जब 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव जो वर्तमान बैठे हैं, यो ब्रह्मा मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो लिए, 50 और रहते हैं तो वो भी पूरे होंगे, यूं मरेगा। उसके बाद ऐसे 7 और ब्रह्मा बैठा दिए जाएंगे, फिर विष्णु मरेगा, फिर 7 विष्णु ऐसे मर लेंगे, साथ में ब्रह्मा भी मरते रहेंगे, फिर एक शिव मरेगा, ये शंकर मरेगा, काल का पुत्र। और जब 70,000 बार ये प्रक्रिया हो लेगी तब एक काल मरेगा ब्रह्मलोक में, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ये सभी प्राणी ऑटोमेटिकली परमात्मा परमेश्वर की कृपा से दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। ये दुर्गा भी मरेगी, काल भी मरेगा और वहां चले जाएंगे। वहां जाकर ब्रह्म और दुर्गा का युवा शरीर ऑटोमेटिकली बन जाएगा उस कबीर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, दिए गए वरदान के आधार। तो ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म आप जैसे नहीं है, मृत्यु तो होती है लेकिन मेरी कुछ और प्रोसीजर है जो तुम नहीं जान सकते। तो कबीर परमात्मा ने आके बताया ये तरीका। जैसे यहाँ कई बहनों के अंदर, भक्तों के अंदर कोई तो कहेगा मैं भैरव हूं, भैरव, और कोई भूत जो कहेगा मैं दुर्गा हूं, काली हूं, अनुजीव कड है, इसका दो धरे धड़ा फिर सिद्धि हो जाए, दुर्गा भी बाज जा और भैरव भी जाता रहे। जैसे कोई सरपंच ना रहे और बाद में भी उसने सरपंच साहब कह आग्रह जी रहा रहेगा, और वो अपने आप ने भी कोई नहीं पूछ रहा कौन सा था सरपंच था, जबकि वो सरपंच है नहीं, फिर भी क्योंकि और उसे सरपंच कहने लग गए, वो एक नाम सा पक गया। तो ऐसे ही ये मृत्यु के उपरांत जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जो मर जाते हैं, उसके बाद फिर ये किसी में प्रवेश करके, क्योंकि पितर रूप धारण कर लेते हैं, इनमें फिर भी कुछ पुण्य शेष रह जाते हैं, और फिर उसी में एक दूसरा भूत और आ जाता है। वो कहता अहम शिवहम शिवहम शिवहम, मैं शिव हूं मैं शिव हूं। वो कहता शिव की पद पर रहा होगा पहला, वो मर गए भूत बन गया। तो पुण्यात्माओं, उन भूतों ने यह पूरा बखेड़ा कर रखा है, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। जैसे कोई सत भक्ति भी मान ले या ब्रह्म तकी करते हैं, कोई विष्णु जी की पूजा करते हैं, मान लीजिए बड़ी बात, तो विष्णु लोक में गए, वहां एक अलग से एक रेस्टोरेंट है, वहां अलग से स्वर्ग बना हुआ प्रत्येक लोक में, जैसे शिव के लोक में, विष्णु जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, है एक कॉमन स्वर्ग है, फिर इंद्र के लोक में, फिर ब्रह्म लोक में भी। तो जो भी जहां की साधना करता है अपने पुण्यों को वहां समाप्त करके, वो तुरंत ही वापस आ जाता है, फिर नरक जाता है 84 लाख योनियों में, धक्के खाता है, भटकता है। जैसे ब्रह्म लोक में चला गया तो वहां हजारों युगों तक अपने पुण्य आधार पर, जितना जिसकी पुण्य है भक्ति है उसका आधार से ब्रह्म लोक में रहेगा, वहां समाप्त करके अपने पुण्यों को फिर नरक जाएगा, नरक के बाद फिर यही फिर धक्के खाओगा। अब जैसे कोई पुण्य आत्मा है आज, और अच्छी पोस्ट है या बढ़िया व्यवसाय है, और वो नो सोच रहा है मैं यहीं डटा रहूंगा, मेरी मृत्यु ना हुआ है, क्योंकि उसको याद भी कोई ना यह बात, और मृत्यु एक सेकंड में हो जाती है, वो सारी उम्र में जो इकट्ठा किया था वो यहीं रह गया। परमात्मा ने बताया है, परमेश्वर ने उदाहरण दिए हैं कि जो सत्संग में नहीं आते और परमात्मा से परिचित नहीं होते, वह गोबर के भूंड है। गोबर का भूंड आपने देखा होगा, खेतों में पशु गोबर कर देते हैं, और भूंड होते हैं कड़े कड़े, उड़ते भी हैं, थोड़ी पंक्षी भी व्याक्रम के, और वो क्या करते हैं, उस गोबर के ग्रोड़े बना लेते हैं गोड़ी सी, और उसने सटोक करते हैं बिल में ले जाकर गोबर ने, है, और सारे रात और सारी दिन इतने वो गोबर खत्म ना हो ले, वो लागे रहा कर ढोहे जाएंगे, इतने बेईमान हो जाते हैं कहीं वो गोबर फिर मिल रहा है कोई ना। और वो गोबर ढोते ढोते गोली बनाते लाके लाते लाते को पशु के पैर के नीचे आकर वो दोनों मर जाते हैं, और वो गोबर उड़ा इकट्ठा करा करा रह जाता बिल में। तो जो प्राणी परमात्मा से परिचित नहीं है और इस माया रूपी गोबर ने जोड़न में दिन रात लागे रहते हैं, और वो जोड़ा जाड़ा गोबर का तो बैंक में रह जाएगा, है, या किसी तरह दे रखा गा वो बढ़कर देना। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दामे, द्विधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। एक बार ये दास पंजाब में तलवंडी भाई, एक छोटा सा कस्बा है बरवाले जैसा, वहां मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम, ज्यादातर वो वहीं रहते थे, वहां कुछ श्रद्धालु अच्छे थे, वैसे तो उनके कई आश्रम थे, मोगा में थे, नजफगढ़ में था, एक खन्ना के अंदर भी था, और तलवंडी भाई, तो ज्यादा तलवंडी भाई रहते थे। उनके सतलोक गमन के बाद इस दास जी को आदेश दे गए थे वह नाम दीक्षा देने का, इस दास के अतिरिक्त उन्होंने किसी को आदेश नहीं दिया था। तो वहां सत्संग करने जाता था ये दास तलवंडी भाई में, वहां पर दूसरे रविवार को हम सत्संग करने जाते थे। तो वहां कोई बुढ़िया मर्गी थी गुरुदेव के भक्तों परिवारों में, उनके कोई रिश्तेदार आए हुए थे उनका शोक व्यक्त करने के लिए, तो उन्होंने, वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने लगे, तो गुरुदेव के सेवकों ने कहा कि आप रुको, कल संडे है, सत्संग सुनना। और आपने सत्संग बहुत सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग भी सुनकर जाइयो आज। उसे परिवार था, कहने लगा मुझे इतना टाइम नहीं है, कल को एक पार्टी आवेगी और उससे मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, अनुबंध होगा, एग्रीमेंट, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। उन्होंने बहुत समझाया, कोई बात ना, कल किस टाइम आओगे, वह 1:30 बजे ही, 1 बजे तो चले जाइयो। नौ से ग्यारह सत्संग होगा, यहाँ से बारह साढ़े ग्यारह खाना खुना खा के चलोगे तो पहुंच जाओगे 2 बजे तक। की बात है या चंडीगढ़ रही 3 घंटे का रास्ता। ना मान्या, बोला तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता नहीं मेरे बिजनेस का। वो चले गए दोनों, चले गए थे अम्बाला के पास, एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था और किसी कारण से उसके पिछले पहिए कंडम हो गए थे, वो निकाल रखे थे, जैक ला रखे थे। मारुति कार के अंदर पूरा परिवार था, दो वे थे, दो एक लड़का लड़की थी, और पूरी स्पीड थे कि उसने तो 5 लाख दिखे थे, गाड़ी किते किते पंजे टेके थी, और उस स्पीड में वो ट्रक के नीचे जा टकराई। इतनी स्पीड तक लगी कि वो जैक भी हट गया, डिग गया, और पूरा लोडेड ट्रक, पहले तो ट्रक टकरा में मर लिए होंगे, राखी कसर काट दीवा, बजरी का लोडेड ट्रक नौका नौ पड़ गया, चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने सिर पैदर। तो पुण्यात्माओं, उनकी दोष नहीं, ये जब तक मालिक परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, सबकी नएगी बांध रखी काल ने, फिरकी बना रखी है, दिन रात बाजले बाजले सपने में भी वह सोचे। तो ये गोबर के भूंड बताए परमात्मा ने, और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं और जिनको वो चतुर लोग जो माया के पुजारी ने सोचे हैं कि तीसरे दिन सत्संग में जावे हैं, ये तो अपना नाश करेंगे, हैं के दरिया सत्संग में जानते हैं, अपना धंधा क्यों ना करते, और आप जी को वो अनजान लोग मूर्ख समझते हैं और आम उन मूर्ख समझे, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, हमारी आंख बन गई, हमारी ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइटिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403 8991984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
4: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्तिविधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
3: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 एफएम इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूले, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं ये भक्तों को ये अकल अलूणे कहे, क्यों ना तो टिक्की बिंदी लाओ लाली हमारी बैंड बेटिया, ना नाखून पालिस लाना, क्योंकि हम नाचे ना लागे फंड बकवा दे खाम खाएगी। एक बहन कह रही थी नवली जी मैं एक ऑफिस में नौकरी करती हूँ, किसी दिन लिपस्टिक वगैरह ना ला कर गई, सारे फंड ना करके गई तो सब चिंतित से होकर बैठ जाती हूँ, कम बोले मेरे ते। मैं पहले दिन ऐसे गई उन्हें सोची कि इसका कोई मर गया, और मेरे ते धीरे धीरे सहज सहज आकर पूछे क्या बात होगी, और मैं हैरान में भी की बात क्या चक्कर है, ये सारे आज अजीबो गरीब तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं। तो एक बहन कहने लगी क्या बात होगी, मैं बोली बात क्यों थी, क्या तेने ये लिपस्टिक वगैरह नहीं ला रखी। कहने लगी हमने नाम ले लिया, जहां से मैंने नाम लिया वहां की मर्यादा है ये नीलाम ले, कोई बात नहीं। फिर मजाक करने लग गया मेरा। तो पुण्यात्माओं तो उन फंड करनिया ने वो हमारी बेटी जो अपना सिंपल वे से रहने लगी वह मूर्ख लगी। अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को। ये जो अकल अलूणे दिखे बिना अकल के दिखा हम भगत कहते, परमात्मा कहते ये तो सारे ज्ञान की जड़ है, इन्होंने तो कति सब कुछ समझ लिया और परमात्मा की भक्ति करे सतलोक में सुख में सथल में आनंद से झूल झूला करेंगे, वहां कोई कुछ भी तो ना करना। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं एक गोबर का भूंड था और वो प्रतिदिन ऐसे उस काम में खूब बिजी था गोबर इकट्ठे करने में। एक भौरा उसमें जाता था बाग में भौरा, और भौरे जैसा ही वो गोबर का भूंड होता है। अब बाग के अंदर वो भौरा नाना प्रकार के महक लेता सुगंध लेता, और वो आकर के उस गोबर के भूंड को देखकर दुखी को कहने लगा रे भाई आ मेरे साथ तुझे बाग में घुमा के लाऊं, और वहां से आनंद है ऐसा है। वो भूंड ने कहा तो अपना काम करे तू तो करते फालतू, और मुझे टाइम नहीं है तेरे जितना जो ना लफंडर नहीं हो, मुझे बहुत काम है तुझे अपना काम करे। बौरे ने सोचा यो देख नालायक और किस में बिजी हो रहा, उसने सोची एक दिन फिर बैठ गया दो तीन दिन पाछे फिर समझान लग गया। तो तीसरी बार जब मीटिंग हुई तक कुछ बात सो आएगी उसने उस गोबर के भूंड ने, और उनके पास बैठने थे क्योंकि फूलों की गंध महक आवे, तो कहने लगा भाई तू आवे है ना, जब वो गोबर का भूंड कहता भौरे को आप यहाँ आते हो ना मुझे आनंद सा आता है, और जहां आप जाते होगे तो बहुत ही अच्छे स्थल होगा। कहने का भाव ये है एक दिन वो राजी कर लिया उस गोबर का भूंड उस भौरे ने कि तू एक बार बाग में चल मेरे साथ, और तेरा कोई बैलेंस काम रहेगा ना गोबर ढोने का मैं मदद करवा दूंगा आके तेरी, तू एक बार चल मेरे साथ। वो चला गया। अब उसने तो जाते ही फूल पर बैठा, ऐसा बैठा ऐसा आनंद आया उठा को नहीं। अब बौरे ने देखा भाई वो तो शाम का समय हो गया और फूल हो गया बंद, फूल बंद हो गया। तो बौरे को तो पता था कि सुबह जिंदा मेरा सुबह पाओगा, अब तो यू निकल नहीं सकता। सुबह उसने जाकर क्या देखा कि सुबह कोई फूल तोड़ने वाला आ गया, उसने उन फूलों को चुन लिया। वो पता होता था कि ये थोड़ी धूप खिलते ही खिल जाएंगे, पता होता उनको, वो ले गया उन फूलों ने कुछ बंध्या ने कुछ खिले हुए ने, और उसने अपनी पूजा पाठ करके वो गंगा में बहा दिए। वो बौरा आया, बौरे ने देखा भाई फूल टूट गया, ये बिरने कीत पड़ा होगा। वो उसने जाके देखा, पहले तो उस धार्मिक अनुष्ठान पर गया जहां वो क्रिया करी थी, उन्हें फिर देखा वो फूल बाहर रखे थे वहां, उसमें जाकर देखा वो फूल खिल गया और वो बौरा वो भूंड उस समय बैठा। फूल पे। जब वो बौरा बोला रहा आजा डूबेगा तो उठे मेरे साथ आजा, तब उठकर आया। तो कहने का भाव ये है, वो गोंड ने बोला रब ने तो मैं जीवन खो दिया भाई, सारा गोबर इकट्ठा करके और सुख तो मैंने आज आया जिंदगी में, मेरे पता टह नहीं गया इस तरह से। तो पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा इस संसारिक धंधे फाइनल मान रहा है और जो इस सत्संग के सुख से एक परिचित हो जाता है, फिर वो गोंड की तरह अटे को नहीं यहां से, क्योंकि ये सुख न्यारा है और वहां सुख है ही नहीं, वो तो एक ब्रह्म माटी है, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। लेकिन परमेश्वर ने यह बताया कि उस प्रारब्ध कर्म करते करते इस मालिक के लिए भी थोड़ा समय निकालो। असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। यहां आने के लिए आप जी ने परमात्मा के इन फार्मूलों को अप्लाई करना पड़ेगा। जीवित मरण का अर्थ होता है, एक तो ये होता है कि मन चाहता है विकार करना, गुटी शूटी लाना है, पता नहीं कि इसके अवाइकले होते हैं, बीड़ी शराब मास्टमा को सांग सिनेमा देखना, कितना गप्पे आंकना, ताश खेलना, सिनेमा देखना, इनसे मन हटा लेना भी जीवित मरना है। और दूसरा मरना यह है कि मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति जा रहा था नाइट सर्विस में और सुबह उसने वापस आना था, कोई विशेष काम था, और वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी उस व्यक्ति की। अब जो व्यक्ति रात में ट्रेवल कर रहा है तो कितना स्पीड होगा उसके काम की, कितना जल्दी थी उसको वापस आकर मैं ये करूंगा और वो करूंगा, अब उसका काम तमाम हो गया, अब वो जल्दी भी रहेगी और काम भी रह गया, कदे नहीं जा सकता, कभी नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं जब आप यहां आने की सोचो तो उसमें ये मान लीजिए आज मेरी मृत्यु हो जाए और फिर कौन करेगा इस काम ने जिसके ऊपर मैं इसे अनमोल स्थान पर जाने से बाधित हो रहा हूं, वंचित हो रहा हूं। तन्नो सोच ले मैं मर गया और चाल देखी जाएगी, तीन दिन के लिए, चार दिन के लिए, दो दिन के लिए, एक दिन के लिए मर के देख लो। अब ये तीन दिन हम मरका आ गए, सोच ले मर गए, जीवित मर गए, और इस तीन दिन में या दो दिन में चार दिन में जितने दिन आप रहोगे, जितना भी कोई काम आपका खराब शराब आप मानते हो हानि होगी तो फिर पूरी कर लेंगे अपना लाग लोग, क्योंकि पहुंच गए हम दोबारा, तीन दिन मरे, और यदि परमानेंट टिकट कट जाए जब के कर लेंगे तो भी तो काम रह जाएगा। तो इस प्रकार इन फार्मूला ने अप्लाई करके और आंख मीच कर चल पड़े तब यहां आया जागा ना, काल कति नहीं आन दे। कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काणे, और संत मिलन को जब चले है ये अटकावे आने, इनका अटकाया अटके नहीं जो संत मिलन को जावे, कह कबीर सो संत है वो आवागमन नसावे। मात पिता सुत बेटे ने कहे स्त्री, आलस यानी लेजीनस आलस कर जा, और बंधु कान लोकलाज ये बाधक है, जब संत मिलने को चलता है तो ये अटकाती है, इसको रोकती है, बाधक बनते हैं। कई जवान बच्चे आते हैं, मेरा पिताजी स्वयं दारू पीवे शराब पीता है और मुझे नहीं होगा तू सत्संग जागा तने काट दूंगा तने पीटूंगा, और ऐसा ही करता है, और मैं आता हूं मैं रुक नहीं सकता। ऐसे कई बहन है वो कहती मेरा पति दुखी करता है, मार पीट करता है और फिर भी मेरे पर रुका नहीं जाता। ऐसे कई भक्त कहते हैं मेरी पत्नी ने कहा जहर खाकर मर जाएंगी जब तू सत्संग में गया था, अब बता क्या करें। लेकिन फिर भगत कहता भाई मरे चाहे जी गलत जगह तुम जाता ना, अब तो मेरा समझ में आ गई। तो यहां फिर कहीं बंधु कान यानी लोक लाज, कुल परिवार के लोग कहने लग जाएंगे, पड़ोस में बैठ कर चर्चा करेंगे, भाई दोहरा कहेंगे इनका इन अक्कल मारी जा रही है, ले है तीसरा दिन झोला ठाव बैग ठाव और चलो सत्संग में जा रही है सत्संग में, कह दे रहा है इनमें ये तो है? एक भगत कह रहा था मैं सत्संग का नहीं चल जाना, और मेरे वो दारू पीणी मित्र नो का अच्छा नो से तू ये खा कर चली बिल्ली हज को, तो मैं उनको नो कहूं भाई मैं अब हम तो चल तो पड़े हज को, तुम चले भी नहीं हज को, तुम अब भी बन ये बुरे कर्म करने। उनकी बातों में उनकी मजाकों में उनके द्वारा दिए गए ये टोंट सहन करता हुआ परमात्मा की जो इस वाणी का सख मन रुकन नहीं देती। जिस बुजुर्ग के बेटे सियाने हो जाए बड़े हो जाते हैं माता पिता के, वो लोक लाज के कारण बच्चों ने कहन लाग जाते हैं दूसरे लोग के पा गया तेरे, हमारा एक रिश्तेदार था उसने नाम ले लिया, एक पाठ करा घर घर जाकर पाठ करा, अब पाठ कराया तो वो बालक सियाने हो रहे थे, उनके पड़ोसिया ने न्यू बका दिया हो उनके बच्चे, कहने लगे भाई तेरा बाबू तो पागल हो गया पिताजी और यू थारा नाश करेगा, देख लाजिए 2000 रुपये अरीब देख लिए तो मेंटल हो लिया। अब वो इसे पीछे पड़े उसका नाम भी छुटवा दिया और करते बार लकड़ने पर भी प्रतिबंध ला दिया, वो ढीला आदमी था ज्ञान समझा नहीं था वो टाण कर गए। तो कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और सतगुरु मिलने जब चला ये अटकावा आण, इनका अटकाया अटके नहीं और सतगुरु यानी संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है वो आवा गवन न साव। तो इस प्रकार जब हम परमात्मा के मार्ग पर प्रस्थान करते हैं तो इस तरह की बाधाएं भी हमारे को आती हैं, लेकिन इनको हमने चीरते हुए आगे चलना पड़ेगा। तो जैसे मीराबाई जी थी उनको बहुत कुछ लोगों ने भला बुरा भी कहा लेकिन

दिए गए इस ज्ञान को स्वीकार करना होगा। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब जैसे आपके पास बहुत अच्छी कोई संपत्ति भी है, माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, और कल मृत्यु होगी, होगी तो कहेंगे उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी करो जल्दी करो, और दो घंटे भीतर शमशान घाट पर फूक फाक कर फारिग हो जाएंगे। रोने वाले रोए जाओ, और वो चला गया ऊपर मनमान फिक्र अकीद के देखियो नीम जागा, और पाछा उसके और नरे लटोटर शुरू कर देंगे। अब वो मान लीजिए कोई पुण्य आत्मा भी था और मृत्यु होगी, वो चला गया स्वर्ग में। जब स्वर्ग में पुण्य समाप्त हो गए तो कहेंगे वहां से भी समाप्त होते, कहेंगे चल नरक में। अब नरक का समय समाप्त होगा, वहां से कहेंगे चल गधे की योनि में। अब गधे का जीवन पूरा होते हुए चल कुत्ते की योनि में, और फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाकर फिर मनमाने फिर मनुष्य जीवन आ जाए। ब्रह्म लोक तक भी गए हुए प्राणी वापस आते हैं, और इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म लोक फाइनल प्लेस है इनका, और ये सबसे अंतिम सुखमय स्थल है, और वहां जाने के बाद भी फिर भी चलो चलो केवल सतलोक में जाकर के या चलो चलो समाप्त होगी। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। बिन साहेब यानी परमात्मा सतपुरुष की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना ना, कि तो सथाई सथल नहीं है। पुणात्मा उस सथाई स्थान को पाने के लिए जो श्रीमद भगवद गीता का ज्ञान दाता ब्रह्म कहता, अर्जुन यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर, फिर वो जो तुम्हें ज्ञान दे उसके आधार से उस परमात्मा की प्राप्ति कर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति यानी वहां चलो चलो समाप्त हो जाएगी, और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थान को प्राप्त होगा, फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन गीता ज्ञानदाता कहता कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू भी मरेगा मैं भी मरता हूं। ये अरहट का कुआ लोई यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देख्या हरहट डोर कहूं सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे हर हट डोर बंधे सब आवे। 600 साल पहले परमात्मा ने कहा था ये तेरे चतुर्भुजी भगवान कहावे ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये भी जन्म मृत्यु के इस चक्कर के अंदर हजारों बार धक्के खा लिए भटक लिए। अब 600 वर्ष पहले ये बातें इतनी कड़वी लगी अज्ञानी संतों के अज्ञान के कारण, हमने परमात्मा को स्वीकारा नहीं। वही ज्ञान है आप जी को स्वीकारिये हो रहा है क्योंकि आप शिक्षित हो गए, और ये शिक्षा मालिक ने इसलिए दी है कबीर जी ने कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। अब ये पीक टाइम है, ये भक्ति युग है, भक्ति काल शुरू हो गया, भक्ति का समय शुरू हो गया, यह बिचली पीढ़ी है। पहले जब परमात्मा आए थे कलियुग के प्रथम चरण में, मगर से गए थे वह सह शरीर, धर्मदास जी को मिले थे, तब कहा था धर्मदास जी इस ज्ञान ने लिपिबद्ध कर ले, और अभी इस मूल ज्ञान को किसी को समझाना नहीं, अरे यो मेरे वाला ज्ञान किसी के समझ मावा को ना, बिना समझाए बिना मेरे बिना, परमात्मा कहते। और धर्मदास तो लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाए। काल ने कहा था परमात्मा से सतयुग में, प्रथम सतयुग में कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समय ही, और अनेक पंथ चलाऊं और नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं। अपने आत्मा यहां बात आकर जाती है कि भाई ये दास ये जो बात कह रहा है तो है तो सच्ची कति सत्य है, लेकिन यह सच जचे को नहीं,

को जताने के लिए थोड़ा सा लालटेन दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य है, आप जी को ये खजाना मिल गया। पहले हम जब इस स्मारक बना लगे थे ना, VCR चल रहे थे, इतनी लंबी बड़ी कैसेट वार दी, तीन तीन घंटे की एक, और वो लिया करते किराए पे, अन्यों का करते 100 रुपये एक एक रात के। तीनों सोचा करते तीन फिल्म ले चाल, तीनों देखेंगे, चाह बनवाए जाते, पिए जाते, हर नौ अखबारे देखे जाते, 9 घंटे ताई तक 100 रुपये ला रखे, सारी कसर काटाएंगे, सारी बकवाद कराया करते। और यहां परमात्मा के नाम पर अमृत वर्ष है, आत्मा भीग रही है आपकी, ये सत्कर मानना, और बहुत से पाप कट रहे इस मालिक की इस अमृतवाणी से आपके। तो इसलिए दास चाहता है कि आप जी को इतना अधिक से अधिक डोज दे दूं ताकि ये रोग शीघ्र नष्ट हो जाए, अज्ञान रूपी, और फिर जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। एक कुमार ने कित शेर की खाल पाएगी खेतों में जंगल में, और उसने लाकर अपने गधे पर डाल दी। फिर उसके मन में आई कि इसने मार दून लट खेता में चला जा, छक्का होगा सांझ ने, शाम ने दे दूंगा धक्के तड़के न पकड़ जाऊंगा। वो ऐसे कर दे, उसने शाम ने गधे पर शेर की खाल डाल के और खेतों में छोड़ा हुए, और गधा खूब छक्के उड़े वो खेती थे, और रखवाले देखने जावे के हर निकट जावे देखे तो शेर बाज ने छोड़ के गांव में आ जा, शेर आ रहा शेर आ रहा। एक हफ्ता हो गया उसने बहुत से वो खराब कर दी खेती, आसपास गांव में चर्चा बोली भाई शेर आ रहा है, सारी खेती खराब कर दे। एक कुमार था समझदार सा, उसने सोचा दूसरे गांव का, भाई खेती शेर खेती तो ना खाया करे, या जरूर कोई चाल पाओगी गधे पर खाल पाओगी। उसने आकर कहा गांव वालों से, भाई थारे शेर ने तो मैं पकड़ दू, मैं टूकर पकड़ेगा कि मैं 5-4 गधे ले चलूंगा अपने, मैं देखी जाके एक आध गधे ने खा लेगा, पछाणता आ जाएगी शेर से के शेर खेती तो ना खाया करे। मैं बोला रहा मर जाएगा भाई, हम नहीं चलना गांव वाले का। वो कहने लगा भाई तुम नो करियो ऊपर वृक्ष पर बैठ जाइयो ऊंचे पर। बोला भाई ठीक सर। तो ऐसा ही किया, वो ऊपर बैठा दिए और वह गधे छोड़ दिए थोड़ी दूरी पे। वो कुमार ने अपना गधा छोड़ा और शेर, थोड़ी देर में गधा ने बोली बोली, फिर हु करन लागे, तो भी लागा हु करता हु। आया उछलता हुआ खाल कीता, वो गधा में आगे मिल गया, वह खाल उतरते गधा का, गधार बोली तो मेरा पिट गया गधा है। जब गांव वाला नो कुमार भी गड़िया और गधा भी तोड़िया दे लठा, शेर की दाड़ गधे की ब्याह ब्याह नारा पता लग जाए। तो ज्ञान से इस बोली से पता लगेगा संत और असंत का। कोई पंडित जी काशी पटकाया था और उस नगरी के राजा ने किसी ने बता रखा तू धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ याग करा ले, पाठ करवा किसी के जप करवा ले, जप कोई पाठ करा, ब्राह्मण थे 7 ब्राह्मण बुलाने थे। अब मंत्री जी को पता लगा भी विद्वान पुरुष है, राजा का काम है, कोई अच्छे छांट छांट का ब्राह्मण बुलाने पड़ेंगे। एक तो वो बुला लिया जो विद्वान पुरुष था, तो रोजाना एक सोने की मोहर दान करे, जो सोने की मोहर प्रथम दान की उस काशी विद्यापीठ से पढ़े हुए ब्राह्मण को, उसने अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी फिर नए नए सूट लाई, कितना बढ़िया श्रृंगार लाई। 2-3 दिन हो गए, पहले पानी के कुओं के ऊपर इकट्ठी हुआ करती गांव की स्त्रियां, तो नए नए पहन के चल रही, तो वो दूसरी ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणों का अलग कुएं हुआ करते कि तू इतना पैसा कहां से लाओ हो तुम, कि मेरा पति जो है ना राजा के वहां पाठ करने जाया करे, रोजाना एक असर भी देता राजा। उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि ऐसे ऐसे उसका पति राजा के यहाँ पाठ करने जाता है, अन्यों सुना हो 7 ब्राह्मण की जरूरत है, अभी तक एक ही पाया है, आप भी चले जाओ। अब वो कहने लगा भगवान मैं इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं तो काम चलाऊ लोग बकड़िया हूं, और वो पढ़ा एजुकेटेड आदमी है शिक्षित है, मेरी बड़ा दाल ना गड़े। तो अब ब्राह्मणी मरोड़ी खा गई, बोली तू तो टाइम पाया कर ले करा करे है, तना कुछ करना सहको नहीं। उन्हें सोची देखी जाएगी रोज लड़ाई होगी, इसका अच्छा तो वही देख लो कि मैं वो ले गया अपना देख काख में पोची चल पड़ा। मंत्री जी से कहा जी मैं अभी ब्राह्मण हूं, कहा जा भाई मैंने तो जरूर थी, बहुत अच्छा हो गया। मंत्री जी ने सोचा
टोटल सात पूरे करने हैं, हो जाएंगे, राजा नाराज ना होगा, बैठा जग बैठ जा पंडित जी। अब वो पहले वाला तो संस्कृत पढ़ रहा है अपने पाठ करे, और वो नौकर जो यू के वाई सही, जो यू के वाई सही, तो दोनों ने सामने एक एक असरफी मिल गई। अब तीसरी का और ऐसे ही, तीसरी को पता लगा, उसने अपना पति श्रृंगार दिया कि तू भी जा ब्राह्मण है, वो भी जा बैठा। उसने पहले वाला तो बोला ठीक, दूसरा नौके दो यू के वाय सही, दो यू के वाय सही, और तीसरा नौके कब तक निभाएगी, कब तक निभाएगी। ऐसे ही फिर एक चौथी ने और श्रृंगार दिया अपना, वो भी बैठ गया। तो वो पहला अपना पढ़ता संस्कृत, दूसरा कहता है दो यू के वाय सही, दो यू के वाय सही, तीसरा नौका कब तक निभाएगी, चौथा नौका निम बन गया जब तक निभाएगी। अब इन पंथों के लिए न्यो बन रही है, अभी न सब ने पता लग गया थरी खाल उतरन लग रही है, और तुम्हारे चेले ही भागने वाले हैं थोड़े दिन में, और उनके जो बना रखे ना परिचर, अब उनको पता लग लिया वही बात तो बिगड़ेगी, पर न्यो सोचे है देखी जाएगी इतने निम बन दे जब तक निभाएगी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा बताते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठगाना ना, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास कर बंदगी भाई बोर ना ऐसा दावे। ओए ओए। ऐसा सुअवसर मानुष जन्म या बिजली पिंडी, और यथार्थ ज्ञान आपके सामने है। तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नू 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जान

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: गुरमुख निमाणा हो

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दी सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: गोर अर्जन

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue Northeast Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो, 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670, 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
2: अब हम चले

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street, Northeast, Calgary,

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 2।

10 32nd Avenue Northeast Calgary. वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जीय तुम्हारी जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाओ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वाडे अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणै जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया
तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ पई ले निवासा, पानी पावक तिन है किया। पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा पई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जप

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन कौ आज संगरिय। पूरन होए हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर हो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलीश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरै घर ता तेरै सब किश है जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुन हो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर आ।

रहाओ रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो पीखन दोय नैन संतोखे जह देखा तह सोई रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो पीखन दोय नैन संतोखे।

0: कैलगरी चौबी घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट